सुप्रभात, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम शिमला। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 34 सेकंड हुए हैं और अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख

0: मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including ministers of foreign affairs, economy and finance, and science and technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to

प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। ये मन की शांति और भगवान से जुड़ने का सर्वोच्च मार्ग है।

राधा रानी नाम अनमोल, जपले प्राणी राधे राधे, जगत के पालनहार भी जिस नाम से रीझे, वो पावन नाम है राधे राधे।

इसी भक्ति प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं मानस गान।

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार लता मंगेशकर, वाणी जयराम और साथ ही संगीत रचना सतीश भाटिया की। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश में IAS और IFS अधिकारियों के पद घटाने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों के पद कम करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि राज्य में एक ही काम होने पर भी अलग अलग पद बनाए गए हैं जिनकी जरूरत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च अधिकारियों के पद कम किए जाएं और निचले स्तर पर कर्मियों की भर्ती बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है। प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति प्रदान करने के लिए शिमला से तोकोवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया ताकि उन्हें मानद हेड कांस्टेबल और मानद ASI के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत लोक भवन शिमला में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद तेलंगाना के नागरिकों को सम्मानित भी किया। इस संग में बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

0: स्वास्थ्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की दो बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है चिंतन का।

कभी शाप भी वरदान हो जाता है। हमें वही सब अच्छा लगता है जो हम सोचते हैं। हम हर चीज को अपने ही दृष्टिकोण से उचित या अनुचित समझते हैं। जब कोई भी स्थिति हमारे विपरीत होती है तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन जब वो शाप वरदान बन जाता है तो हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। पांडव वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अर्जुन भाइयों से आज्ञा लेकर शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे पाशुपास्त्रास्त्र प्रदान किया। इसके उपरांत देवराज इंद्र अर्जुन को रथ में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। अर्जुन ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया। देवताओं ने अर्जुन का बड़े उल्लास से स्वागत किया। स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवराज इंद्र किसी भी तरह से अर्जुन को संतुष्ट करना चाहते थे। अप्सराएं अपनी समस्त कला प्रकट कर देवताओं तथा अतिथियों को रिझाना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन मस्तक झुकाए नेत्र नीचे किए शांत बैठे थे। उन्हें तो फल मूल खाकर भूमि शयन करने वाले वनवासी भाई स्मरण आ रहे थे। सहसा देव प्रतिहारी ने उर्वशी का नाम लिया। देव सभा में उपस्थित होकर नृत्य करती हुई उर्वशी को उन्होंने कई बार देखा था। महोत्सव समाप्त होने पर देवराज इंद्र ने गंधर्वराज चित्रसेन को अपने पास बुलाकर कहा कि उर्वशी आज रात्रि में अर्जुन की सेवार्थ रहेगी। उर्वशी मन ही मन अर्जुन से अनुरक्त हो चुकी थी। रात्रि में उर्वशी भरपूर श्रृंगार करके अर्जुन

के निवास स्थान पर पहुंची। अर्जुन उर्वशी को देखते ही शैया से उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और बोले, माता आप इस समय कैसी पधारी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उर्वशी ये सुनकर भौचक्की रह गई। उर्वशी ने उन पर आसक्त होने तथा देवराज इंद्र के आदेश के बारे में बतलाया, लेकिन अर्जुन ने स्थिर भाव से कहा, आप मुझे ऐसी अनुचित बात फिर ना कहें, आप ही कुरुकुल की जननी हैं, ये बात मैंने ऋषियों से सुन रखी है, मैंने आपको कुल की माता समझकर आपके सुंदर चरणों के दर्शन किए हैं। उर्वशी अर्जुन को समझाने लगी, पार्थ ये धरा नहीं है, स्वर्ग है, हम अप्सराएं ना किसी की माता हैं, ना बहन, ना ही किसी की पत्नी हैं। स्वर्ग में आया हुआ प्रत्येक प्राणी अपने पुण्य के अनुसार ही हमारा उपभोग कर सकता है, तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। रात्रि का एकांत समय था और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रार्थना कर रही थी, किंतु धर्मज्ञ अर्जुन के चित्त को कामदेव स्पर्श भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जिस प्रकार कुंती मेरी माता है, जिस प्रकार माद्री मेरी माता है, जिस प्रकार इंद्राणी शची देवी मेरी माता है, उसी प्रकार मैं आपको भी अपनी माता समझता हूँ, आप मुझे अपना पुत्र ही मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। उर्वशी की ऐसी उपेक्षा तो कभी किसी ऋषि ने भी नहीं की थी। उर्वशी को अपना ये अपमान सहन न हुआ, उसने क्रोधवश अर्जुन को शाप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसक के समान मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए किन्नर बनकर स्त्रियों के बीच नाचते गाते हुए एक वर्ष तक तुम्हें रहना पड़ेगा। शाप देकर उर्वशी चली गई। अर्जुन ने उर्वशी को जाते समय भी मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। प्रातःकाल देवराज इंद्र को इस घटना का पता चला। अर्जुन बोला, धर्म का पालन करने वाले पर कभी विपत्ति नहीं आती, उर्वशी का दिया शाप अर्जुन के लिए अज्ञातवास में वरदान बन गया था।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। और आज इस फ्रीक्वेंसी पर आप कौन सी प्रोग्राम्स किस समय सुन पाएंगे, इस बारे में अब आपको जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का पिटारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस के साथ खुद को अपडेट कीजिए सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर।

देश और दुनिया के ताजा समाचार सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और रात 9 बजे News@9। हिंदी में समाचार का वक्त रहेगा दोपहर 12 बजे, दिन में 1 बजे, 2:15 और रात 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे दोपहर 12:05 पर, दिन में 1:05 पर, शाम 7:05 पर और रात 11:05 पर। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और रात 7:45 पर।

कुछ एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स एंजॉय कीजिए हमारे साथ, सुबह 8:45 पर, दोपहर 12:10 पर, दिन में 1:10 पर सुनिए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और फिल्म म्यूजिक रात 8:30 पर।

गीत सुनिए सुबह 11:05 पर, दिन में 3:10 पर आप सुनेंगे ओल्ड हिट्स प्रोग्राम, रात 8 बजे भूले बिसरे गीत और रात 10:30 पर सदाबहार नगमे। संगीत के विविध रंगों से सजा सब रंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा दिन में 2 बजे। यंग लिसनर्स के लिए प्रोग्राम युववाणी लेकर हाजिर होंगे दिन में 3:30 पर। लोकल न्यूज अपडेट के साथ एंजॉय कीजिए कुछ सुपर हिट म्यूजिकल नंबर्स शाम 4 बजे। बॉलीवुड की एंटरटेनिंग फिल्में, उनसे जुड़े किस्से और कहानियां और गाने सुनिए एक फिल्म से प्रोग्राम में रात 9:15 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम में रात 9:30 पर, जिसका नाम है दिल की आवाज़ भी सुन। आपकी फरमाइश पर यह कार्यक्रम आधारित रहता है और इस कार्यक्रम में ईमेल भेजकर आप सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी फिल्मी गाना। हमारा मेल आईडी है AIRFM शिमला music@gmail.com।

कुदरत के रंग निहारिए हमारे संग सुबह 9:30 पर। गीत गाता चल प्रोग्राम में एंजॉय कीजिए कुछ लवली सॉन्ग्स सुबह 10:00। पुराने फिल्म

0: एफएम शिमला पर गजलों की रुमानी महफिल सजेगी रात 10 बजे। पहाड़ी लोक संगीत का आनंद लीजिए सुबह 8:32 पर, 11:30 पर, दिन में 2:30 पर और शाम 4:20 से आप सुन सकते हैं विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। तो ये हैं एफएम शिमला के आज के खास प्रोग्राम्स, जिन्हें एंजॉय करने के लिए, सुनने के लिए आपको ट्यून इन रहना है हमारे साथ एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम का।

आपकी सुबह को इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग बनाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। और आज इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या बातें हम आपके साथ करने वाले हैं, ये जानने के लिए ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर FM शिमला के साथ। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

भगवान टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है और बीज के टूटने पर नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए लाइफ में कभी आप खुद को टूटा हुआ या फिर हेल्पलेस महसूस करें तो समझ लेना कि भगवान आपको किसी बड़ी उपयोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सब्र रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ अपनी सुबह शुरू कीजिए। ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। मैं हूँ आपके साथ स्वाति डोकरा।

आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर

0: अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। और अब कार्यक्रम में जिक्र 3 जून से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का। भारत के इतिहास में 3 जून की तारीख बहुत महत्व रखती है। यही वो तारीख थी जब साल 1947 में ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया। भारत के बंटवारे की इस घटना को माउंट

0: भारत के इतिहास में 3 जून की तारीख बहुत महत्व रखती है। यही वो तारीख थी जब साल 1947 में ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया। भारत के बंटवारे की इस घटना को माउंटबेटन प्लान के नाम से भी पहचाना जाता है। भारत के जाने माने कवि, उपन्यासकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को साल 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि वापस भी लौटा दी थी। नाइटहुड ब्रिटिश राजशाही द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान है, जिसे समाज, कला, विज्ञान या देश में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बात करें साल 1918 की, तो उस वर्ष में इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव रखा। और साल 1972 में पहला भारत निर्मित आधुनिक युग का युद्धपोत INS नीलगिरी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारत के इतिहास से जुड़े ये थे कुछ रोचक तथ्य। और आज की तारीख से जुड़े विश्व इतिहास में क्या है खास, बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। आप सुनते रहें FM शिमला 103.7 MHz पर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
0: आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर, सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और हिस्ट्री ऑफ द डे की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, और अब विश्व इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि 3 जून 1700 यानी आज से लगभग 326 वर्ष पहले बार्सिलोना में अविश्वासी अकादमी की स्थापना की गई। ये एक साहित्य अकादमी है जिसका उद्देश्य था शास्त्रीय और कैटलन इतिहास और कविता के अध्ययन को बढ़ावा देना। पिछले वर्ष 3 जून को इस अकादमी के 325 वर्ष पूर्ण होने पर इसे बार्सिलोना शहर के ऐतिहासिक अभिलेखागार में मानविकी अकादमी के रूप में पुनर्गठित किया गया। 3 जून 1892 में लिवरपूल फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई, जो आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्ड फुटबॉल क्लब्स में से एक है। साल 1965 में नासा द्वारा जेमिनी 4 नामक पहला बहु दिवसीय अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इस दल के सदस्यों में से एक अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड वाइट स्पेस वॉक करने वाले पहले अमरीकी व्यक्ति बने। तो ये थे आज की तारीख से जुड़े कुछ ऐतिहासिक रोचक तथ्य, और अब जिक्र उन इंडियंस का जिनका आज बर्थडे है। उन मशहूर भारतीय हस्तियों में शामिल है मलयालम साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि गोविंद कुरूप शंकर, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे, और बी टाउन के फेमस सेलेब जिनका आज बर्थडे है उनमें शामिल है अहमद खान, जो एक फेमस कोरियोग्राफर हैं और रंगीला, नायक, केक हीरोपंथी और बागी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने कुछ सुपरहिट गाने जो हैं कोरियोग्राफ किए हैं। और आज अगर हमारे किसी लिसनर का बर्थडे है या फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी एफएम शिमला पर। प्रोग्राम में होंगी आपसे कुछ और ख़ास बातें, आप यूं ही सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में कभी कभी धीरे चलने का भी ना अपना ही मजा होता है। थोड़ा ठहर कर, गहरी सांस भर कर, जरा आसपास को गौर से देखने पर आपको नए नए अनुभव मिल सकते हैं। और इन नए एक्सपीरियंसेस को जीने का एक खुशनुमा मौका लेकर आती है साइकिल की सवारी। साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखाता है जीवन भर स्वस्थ रहना। ये ना सिर्फ परिवहन का एक सरल और किफायती माध्यम है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसी उद्देश्य के साथ हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में समाजशास्त्र के प्रोफेसर लेजेक सिबिलिस्की ने अपने छात्रों और समर्थकों के साथ मिलकर साइकिल के महत्व को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने इसके विषय में प्रस्ताव भी रखा। कई वर्षों से चल रहे इस अभियान को 12 अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की और 3 जून का ये जो दिन है विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये प्रस्ताव 193 सदस्य देशों द्वारा भी अपनाया गया। हर साल ये दिन एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। साइकिलिंग आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और ये प्रदूषण कम करती है, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाती है और शहरों में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने में, ट्रैफिक जाम में बहुत ही कन्वीनियंटली ट्रैवल करने में हेल्प करती है। और अगर हम अपने शिमला शहर की बात करें ना, तो यहाँ कई ऐसे ट्रेल्स हैं जहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जिनमें शिमला का वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसके अलावा मशोबरा, नालदे

रावा कुफरी नारकंडा शिमला हेरिटेज वॉक के कुछ एरियाज में आप कंफर्टेबली साइकिल चला सकते हैं। शिमला की नेचुरल ब्यूटी और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के खूबसूरत नज़ारों के बीच ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए आप साइकिलिंग एंजॉय कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए एनवायरमेंट की बेहतरी के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में बातों का ये सिलसिला दोस्तों यूं ही चलता रहने वाला है और एंजॉय करते रहिए आप साथ साथ ये म्यूजिकल नंबर्स।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। हिल्स क्वीन शिमला अपने सुहाने मौसम और यहाँ की हेरिटेज ब्यूटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और यहाँ की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि यहाँ की ये जो रिज और मॉल रोड हैं और आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर आपको भारतीय और विदेशी पर्यटक साल के 12 महीने घूमते नजर आएंगे। अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में पहाड़ों की रानी शिमला में भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। और आजकल के शिमला के मेन अट्रैक्शंस की बात करें ना, तो इस समर सीज़न शिमला में तैयारियां चल रही हैं आने वाले समर फेस्टिवल की, जो 8 जून से 12 जून तक रहेगा। और इस दौरान यहां कल्चरल, स्पोर्ट्स, फूड स्टॉल्स, कॉम्पिटिशन्स, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, डॉग शोज़ के अलावा बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस समर सीज़न शिमला में फेस्टिव वाइब्स इंजॉय करना चाहते हैं तो 8 जून से 12 जून तक चलने वाले समर फेस्टिवल में जरूर आइएगा। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। प्ले कर रही हूँ प्रोग्राम का ये आखिरी गाना आप सभी के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: इसी गाने के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। और आपको हम बता दें कि शाम 4:20 से FM शिमला पर आप सुन सकते हैं विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। 4:20 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम, 4:50 पर सुनिएगा महासवी कार्यक्रम, 5:20 पर किन्नौरी कार्यक्रम, 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:35 पर आप सुन सकते हैं कुल्लवी कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए ही जुड़े रहिए FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। और अब FM शिमला पर वक्त हो चला है FM न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उप मुख्यमंत्री ने कल सोलन पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान अग्निहोत्री ने बताया कि HRTC को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 297 इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें खरीदी जा रही हैं। राज्यसभा एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिमला में बिलासपुर और सिरमौर जिलों में HP शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर जिले के 40 और सिरमौर जिले के 23 क्लस्टरों की समीक्षा की। बैठक में परियोजना से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बागवानी मंत्री ने सभी विभागों, ठेकेदारों और सलाहकारों को 15 जून तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वे सोलन जिला के कसौली उपमंडल में कांडो के समीप धर्मपुर सुबातू कठनी मार्ग के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 13 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए करीब 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट प्रतिबंधित सड़क मार्ग पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने कल मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद सचिवालय का घेराव कर फैसले को वापस लेने की मांग की। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ताओं की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी है। इस समय बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 में

0: मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
6: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सब

0: का विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक

0: मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर

0: and calls off Beirut strike after heated call with Trump. While the Pioneer reports, Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to Four Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha's Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected president of 81st session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series to 1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला और अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य विश्वभर में भारतीय प्रतिभाओं को भारत के वैज्ञानिक और नवाचार भविष्य से जोड़ना है। योजना के तहत साइबर सुरक्षा सहित राष्ट्रीय महत्व के 13 प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भाग लेने वाले संस्थानों और शोधकर्ताओं का चयन एक सशक्त समिति की देखरेख में एक कड़ी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया PMRC पोर्टल पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंदर गुप्ता से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति संविधान के शेड्यूल 5 के अंतर्गत राज्यपाल के पास निहित है। जगत सिंह नेगी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को हटाने का अनुरोध भी किया ताकि प्रदेश के जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों की युवा पीढ़ी को नौतोड़ का लाभ मिल सके। इस संग में बस इतना ही। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और अब लोक संगीत कार्यक्रम में ये पहला लोक गीत सुनिए नारायण सिंह चौहान की आवाज में।
6: आँखों

0: रेणु भारद्वाज और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना ये लोकगीत।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
1: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इस लोकगीत में राज प्रभाकर को।

0: और इसी लोकगीत के साथ अभी के लिए लोक संगीत में बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और इस फ्रीक्वेंसी पर एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला कंटिन्यू है इन म्यूजिकल नंबर्स के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

ये पेपी और ट्रेंडी म्यूजिकल नंबर्स आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किया है आपने एफएम शिमला। एंजॉय कर रहे हैं ये गाने हमारे साथ।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
0: FM.

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन एफएम शिमला के साथ। और अब आपको बता दें आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुरबेला कार्यक्रम में आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंडित रोनू मजूमदार से बांसुरी वादन पर राग अहीर भैरव। एक रोचक विषय के साथ आनंद लीजिए मधुर गीतों की रिमझिम फुहारों का सुबह 10:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित उमंग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए। दिन में 1:10 पर कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए। आज रात 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। लोक संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 11:05 पर। दिन में 2:30 पर रात 8:00 धारावाहिक गीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अंजना व रीता देवी, बीआर वर्मा व साथियों के गाए लोकगीत। और शाम 4:20 से आप सुन सकते हैं विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय

0: एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की है प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप का दावा, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत करेगी हासिल। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में स्वगणना अभियान जारी, आम जनमानस स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी 15 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज। कुल्लू जिला में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जारी। और मौसम विभाग का आज से 6 जून तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आम जन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सोलन में पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य HRTC को मजबूती प्रदान करने के साथ ही राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देना है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई है और इसमें 32 आरामदायक सीटों के साथ सामान रखने का भी उचित प्रबंध होगा। उन्होंने कहा कि बसों के लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन ई बसों के रूट ट्रायल का कार्य पूरा हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों से साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने में आने से पहले जो गारंटियां और वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते जनता ने चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि ये चुनावी नतीजे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप है और भाजपा आगामी चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेगी।
4: जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो जनमत को खो चुकी है और ये जो जीत का क्रम है अब ये रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आगे अब 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि जो अभी पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो ग्राउंड रूट का जो कार्यकर्ता है या धरातल के ऊपर जो आम जनमानस है वो इस बात को समझ चुका है कि हमारा जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का ही है और प्रदेश में अपनी सरकार।
3: राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक जागृति और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने

0: की सराहना की है। वे कल शिमला में आध्यात्मिक वक्ता शिवानी के ध्यान व प्रवचन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संस्था वर्षों से सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मूल्य आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि ब्रह्म कुमारी लोगों को ध्यान, आत्मचिंतन और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से आत्म जागरूकता विकसित करने में सहायता करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण समाज के लिए बेहद आवश्यक है। कांगड़ा जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों सहित विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण व शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। हेमराज बैरवा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में आम जनमानस 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी स्वगणना अभियान आरंभ किया गया है। हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने पर एक स्वगणना आईडी प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान भी किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागवान मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिलासपुर व सिरमौर जिले में HP शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की कल शिमला में अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में धरातल पर चल रहे सिविल कार्यों की स्थिति, काम के दौरान पेश आ रही चुनौतियों, गुणवत्ता और कार्यों को समय पर पूरा करने के संबंध में भी चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने संबंधित विभाग के सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति न होने की स्थिति में खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएंगे। बागवानी मंत्री ने कहा कि कार्य में गुणवत्ता न होने पर संबंधित फर्मों के साथ साथ देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कुल्लू जिले में रेबीज के मामलों को कम करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने व नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करना और इनके द्वारा लोगों को काटने के मामलों में कमी लाना है। एक रिपोर्ट।
1: कुल्लू जिला में रेबीज के मामलों को कम करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पहल जारी करते हुए मुहिम चलाई गई है। पशुपालन विभाग ने पिछले 5 माह के दौरान 4,416 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा 224 लावारिस कुत्तों की नसबंदी भी की गई है। विभाग ने वैक्सीनेशन और नसबंदी का कार्यक्रम जारी रखा है ताकि कुत्तों के काटने तथा सड़कों पर उनकी बढ़ती संख्या के मामलों में कमी लाई जा सके। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला में पशु चिकित्सालय माहौल के अलावा मनाली, रायसन व बंजार चिकित्सालय को इस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिला के हर क्षेत्र में पालतू और लावारिस कुत्तों के नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि रेबीज की बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में आगामी 8 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने आज से 6 जून तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर बारिश, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा व चोटियों पर हुए हल्के हिमपात से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर मैदानी व निचले क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार

पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, दूसरे राज्यों से ब्याह कर लाई गई महिलाओं को आरक्षण नहीं, जिस राज्य में कोई विस्थापित होता है वहां उसे आरक्षण नहीं मिल सकता। पंजाब केसरी ने पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन पर लिखा है, लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद बहाल हुई कांगड़ा घाटी रेल सेवा। दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक कांगड़ा में नैरो गेज ट्रेन सेवा बहाल, अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दैनिक जागरण के शब्द है, शिमला में सील्ड सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोकने पर वकीलों का प्रदर्शन, मंत्री की गाड़ी का चालान कटवाया, बड़े अफसर घटाएंगे कर्मचारी बढ़ाएंगे, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 800 और पद भरेंगे। वही हिमाचल दस्तक के अनुसार, अफसरों के काडर में कटौती कर निचले स्टाफ की ज्यादा भर्ती करेगी सरकार। दैनिक भास्कर के शब्द है, पूर्व सैनिकों की मानद नियुक्ति, 246 को बनाया हेड कांस्टेबल तो 115 बने ASI। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना

0: मुताबिक कांगड़ा में नैरो गेज ट्रेन सेवा बहाल, अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दैनिक जागरण के शब्द है, शिमला में सील्ड सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोकने पर वकीलों का प्रदर्शन, मंत्री की गाड़ी का चालान कटवाया, बड़े अफसर घटाएंगे कर्मचारी बढ़ाएंगे शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 800 और पद भरेंगे। वही हिमाचल दस्तक के अनुसार अफसरों के काडर में कटौती कर निचले स्टाफ की ज्यादा भर्ती करेगी सरकार। दैनिक भास्कर के शब्द है, पूर्व सैनिकों की मानद नियुक्ति, 246 को बनाया हेड कांस्टेबल तो 115 बने एएसआई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की है प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप का दावा, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत करेगी हासिल। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में स्वगणना अभियान जारी, आम जनमानस स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी 15 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज। कुल्लू जिला में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या में कमी लाने के लिए नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीन अभियान जारी। और मौसम विभाग का आज से 6 जून तक अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अंधड़ का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला, FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला।
3: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
4: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
3: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
4: नियम और शर्तें लागू।
2: और अब FM शिमला पर ये वक्त है कुदरत के रंग प्रोग्राम का।

कभी धूप चांदनी कभी बादल हवा, कभी धूप चांदनी कभी बादल हवा, कभी बरखा गुलिस्तान होती है, हैरत अंगेज नक्काशी कण कण में भरी, कुदरत विश्व के प्राण होती है। और कुदरत के हसीन खूबसूरत नज़ारों का दीदार करने सैलानी खींचे चले आते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश। और अगर किसी जगह पर आप बार बार घूमने के लिए जा रहे हैं ना, तो वाकई उस जगह में कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल, कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन ज़रूर है जो आपको वहाँ पर खींचे ले आता है। और हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें वो आकर्षण है जिसके लिए आप बार बार यहाँ आने पर मजबूर हो जाते हैं। आप जब भी अपनी हॉलीडेज प्लान करते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए ही आप ये सोचते हैं कि हमें बस रिलैक्स करना है, तो आप सोचते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। और आजकल गर्मियों के जो दिन चल रहे हैं और हमारे भारत के बहुत सारे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब ज़्यादा गर्मी भी होती है तो अगर दो तीन दिन ज़्यादा गर्मी है तो उसके बाद जो है बारिश की रिमझिम फुहारें भी यहाँ पर बरस पड़ती हैं, जो यहाँ की जो लोग हैं उनको गर्मी से थोड़ी राहत भी देती है। और ख़ास तौर पर जो सैलानी जो मैदानी इलाकों की गर्मी जूझ रहे हैं उससे थोड़ा सा निजात पाने के लिए ठंडे प्रदेश हिमाचल प्रदेश घूमने चले आते हैं। तो जी, इस कार्यक्रम में ना हम आपको हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में टाइम टू टाइम बताते रहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी छुट्टियाँ यहाँ बिता सकते हैं। और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो भी आपके लिए हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं, कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश की कुछ बातें होंगी। तो आप यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

इस दुनिया में ना देखने और घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं। कहीं बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, बर्फीली चोटियां हैं, नदी, झरने, घाटियां, बगीचे, प्रकृति के हैरान करने वाले नज़ारों से ये दुनिया भरी पड़ी है, जिन्हें देखने की उत्सुकता ट्रैवलर्स को दुनिया के कोने कोने में ले जाती है। लेकिन उन जगहों पर इंसानों के साथ साथ उनका कचरा भी जाता है और यही पर्यटन स्थलों को पल्यूट करने का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। तो आप अगर किसी जगह की प्राकृतिक सुंदरता को मन भर कर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने उसी नेचुरल रूप में रहे, तो कोशिश कीजिए जब भी पर्यटन के लिए निकलें उस जगह को गंदा ना करें। और अगर आप कुछ

सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स आप कैरी करते हैं प्लास्टिक की, या फिर आप कुछ ईटेबल आइटम्स कैरी करते हैं, तो उनको यूज़ करने के बाद उनके जो रैपर्स हैं या खाली बॉटल्स हैं उनको आप प्रॉपरली डस्टबिन में ही डंप करें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी व्हीकल लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक थैला अपने साथ रख सकते हैं जिसमें वो कचरा आप डंप कर दें और बाद में प्रॉपरली उसको आप डस्टबिन में फेंकें। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत गहनता से इस पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना सा सोचना काफ़ी है कि ये पर्यावरण, ये पृथ्वी हमारा घर है और हमें इसको गंदा नहीं करना है। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम कुदरत के रंग। दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें कंफर्ट जरूर दिया है, लेकिन शांति आज भी प्रकृति के बीच एकांत में मिलती है, और इसीलिए लोग जिंदगी में कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के सुकून के लिए पहाड़ों की ओर घूमने निकलते हैं। लेकिन हर मौसम में पहाड़ों पर आपको प्रकृति का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। बसंत ऋतु जब भी आती है, समर सीज़न जब भी आता है, हिमाचल प्रदेश की ये वादियाँ सुंदर नज़ारों से भर जाती हैं, और जहाँ कहीं भी नज़र जाती है वहाँ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही अनोखे और रंगीले पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हिमाचल प्रदेश जब भी घूमने आएंगे, आई एम श्योर आप यहाँ से निराश होकर तो नहीं जाने वाले, बशर्ते आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए निकलें, आप अपनी बस से, अपनी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हों या फिर आप बस से ट्रैवल कर रहे हों, आप कचरा नहीं फैलाएंगे और प्रॉपरली ही उसे डस्टबिन में डंप करेंगे। और अगर आप किन्हीं ऐसे देव स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ की पवित्रता का भी आप ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश अपने मेहमानों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है, और हिमाचल प्रदेश के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो आप सभी सैलानियों से हमारी ख़ास तौर पर यही गुजारिश रहती है कि आप जब भी यहाँ पर घूमने आएँ, यहाँ के शांत वातावरण में आप अच्छा टाइम बिताएँ, और कोई ऐसी हरकत आप ना करें या फिर यहाँ की शांति को ख़राब करने का कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें भी लगे कि हमने अपने मेहमानों की जो है वो खातिरदारी क्यों की, या फिर हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर आकर कुछ ऐसी हरकतें ना करें या हुल्लड़बाजी।

ना करें, कुछ ऐसा यहाँ की शांति को ख़राब करने की कोशिश ना करें, ताकि ये एक जो यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर है वो यूं ही बना रहे। खैर, आप यहाँ पर आएंगे तो आप आई एम श्योर यहाँ से अपनी कुछ अच्छी यादें ज़रूर लेकर के जाएंगे, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट भी बने रहेंगे तो ही सबकी भलाई उसमें होगी। खैर, कुदरत के रंग कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में हम आपसे अक्सर चर्चा करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको बताते हैं, साथ ही साथ आपके साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, मौसम के अनुसार जो यहाँ पर अपडेट्स होते रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी। बहरहाल, आज के लिए कुदरत के रंग कार्यक्रम मैं इतना ही प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। प्रोग्राम का ये आखिरी गाना

0: और अब एफएम शिमला पर वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइन साथ में प्रियंका ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है। कांगड़ा उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में आम जनमानस 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान भी किया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराया है। उन्होंने दावा किया कि ये चुनावी नतीजे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का रोडमैप है और भाजपा आगामी चुनाव में एकतरफा जीत हासिल करेगी। पूर्व केंद्रीय

0: मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर पठानकोट जोगिंदरनगर रेल सेवा को 2 वर्षों बाद पुनः बहाल करने के अवसर पर अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आवंटन पिछली यूपीए सरकार के दौरान आवंटित 104 करोड़ रुपये के अनुदान से लगभग 27 गुना अधिक है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में आगामी 8 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने आज से 6 जून तक राज्यों के अलग अलग स्थानों पर बारिश, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस संग में बस इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे FM न्यूज हेडलाइंस।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

FM शिमला पर पुराने फिल्मी गाने अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको बता दें हम कि सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से, दिन में 3:10 पर सुनिए ओल्ड हिट्स प्रोग्राम, रात 8 बजे भूले बिसरे गीत और रात 10:30 पर सदाबहार नगमे। और FM शिमला पर अपनी पसंद के गाने अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी फरमाइशी गीत जो है यहाँ सुनना चाहते हैं FM शिमला पर, तो रात 9:30 पर आप शामिल हो सकते हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की आवाज़ भी सुन, AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com। ये है हमारा मेल आईडी जिस पर आप ईमेल भेजकर सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी फिल्मी गाना। और अब FM शिमला पर वक्त हो चला है गीत गाता चल प्रोग्राम का। प्रोग्राम की शुरुआत घर फिल्म के इस गाने के साथ, आवाज है इस गीत में लता मंगेशकर की, गुलजार का लिखा ये गाना जिसे कंपोज किया है राहुल देव बर्मन ने।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में बरसात की रात फिल्म के लिए ये गाना कंपोज किया था आरजी बर्मन ने। और अब अगला गाना आपको सुनवा रही हूँ किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कंपोज किया ये गाना जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, मंचली फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ट्यून इन है आप FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गीत गाता चल। और अब इस प्रोग्राम में अगला गाना लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना, जिसे कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ये गाना हमने चुना है वो 7 दिन फिल्म से।

0: ये मेलोडियस गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम गीत गाता चल। मासूम फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में गुलजार का लिखा ये गाना था, जिसे कंपोज किया था आरडी बर्मन ने।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

SH बिहारी का लिखा ये गाना सुनिए। शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में तेरी मेहरबानियां फिल्म के लिए ये गाना कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: राघवेंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
1: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला, MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। गीत गाता चल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस समय हमारे साथ, और 70s और 80s के कुछ गाने अभी तक आपने एंजॉय किए, और अब 90s के कुछ गाने सुनिए। शुरुआत बाजीगर फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ, जिसमें आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। नवाब आरजू का लिखा ये गाना है, जिसे कंपोज किया है अनु मलिक ने।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: गीत गाता चल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गाना सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में समीर का लिखा ये गाना जिसे कंपोज किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम अग्नि साक्षी।

0: शिमला। और अभी प्रतीक्षा करें हमारे।
1: आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आम जन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सोलन में पहुंची 80 इलेक्ट्रिक बसों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य HRTC को मजबूती प्रदान करने के साथ ही राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देना है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई हैं और इसमें 32 आरामदायक सीटों के साथ सामान रखने का भी उचित प्रबंध होगा। उन्होंने कहा कि बसों के लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इन ई बसों के रूट ट्रायल का कार्य पूरा हो चुका है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार जनमत खो चुकी है। नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव टालने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां व वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते जनता ने चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव नतीजे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का रोड मैप है और भाजपा आगामी चुनाव में एक तरफा जीत हासिल।
1: जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो जनमत को खो चुकी है और ये जो जीत का क्रम है अब ये रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आगे अब 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि जो अभी पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो ग्राउंड रूट का जो कार्यकर्ता है या धरातल के ऊपर जो आम जनमानस है वो इस बात को समझ चुका है कि हमारा जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का ही है और प्रदेश में अपनी सरकार।
0: कांगड़ा जिला के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों सहित विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण व शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। हेमराज बैरवा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में आम जनमानस 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भी स्वगणना अभियान आरंभ किया गया है। हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने पर एक स्वगणना ID प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान भी किया। कुल्लू जिले में रेबीज के मामलों को कम करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने व नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर कुत्तों की बढ़ती संख्या को कम करना और इनके द्वारा लोगों को काटने के मामलों में कमी लाना है। एक रिपोर्ट।
2: कुल्लू जिला में रेबीज के मामलों को कम करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पहल जारी करते हुए मुहिम चलाई गई है। पशुपालन विभाग ने पिछले 5 माह के दौरान 4,416 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा 224 लावारिस कुत्तों की नसबंदी भी की गई है। विभाग ने वैक्सीनेशन और नसबंदी का कार्यक्रम जारी रखा है ताकि कुत्तों के काटने तथा सड़कों पर उनकी बढ़ती संख्या के मामलों में कमी लाई जा सके। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला में पशु चिकित्सालय माहौल के अलावा मनाली, रायसन व बंजार चिकित्सालय को इस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। पशुपालन

0: विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा के अनुसार जिला के हर क्षेत्र में पालतू और लावारिस कुत्तों के नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि रेबीज की बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में आगामी 8 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने आज से 6 जून तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर बारिश, अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा व चोटियों पर हुए हिमपात से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर मैदानी व निचले क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम हल्का ठंडा बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ और ये वक्त है पुरानी फिल्मों से। पुरानी फिल्मों की तारीफ करने के लिए उनकी सादगी, बेहतरीन संगीत और मजबूत कहानी ही बहुत होती थी। तो चलिए CID फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं गीता दत्त की आवाज़ में।

0: पुरानी फिल्मों की मजबूत कहानी और म्यूजिक की तो क्या कहने होते थे। आज तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन पुराने में जो रूह और सुकून था आज कहाँ। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं बात एक रात की फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में।
1: Mm-hmm.

0: पुरानी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का असली इतिहास और कला है। इन फिल्मों के गाने, लिरिक्स और म्यूजिक ऐसे हैं जो आज भी दिल को छू लेते हैं, सुकून देते हैं।
1: एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं दहलीज फिल्म से, आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर भूपेंद्र की, हसन कमल के बोल रवि का संगीत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आज के जमाने में भले ही टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन पुरानी फिल्मों की एक्टिंग और सादगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस समय की कहानी, डायलॉग्स हमेशा ही ताज़े से लगते हैं। पूनम की रात फिल्म का गीत बोहिंद, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

पुरानी फिल्मों से मैं आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर अब आपको सुनवाते हैं पहाड़ी संगीत में शांति बिष्ट और पूनम शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

पुरानी फिल्मों से मैं आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर अब आपको सुनवाते हैं पहाड़ी संगीत में शांति बिष्ट और पूनम शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

पहाड़ी संगीत पहाड़ों की तरह ही शांत, गहरा और जीवंत होता है। जब भी आप इस संगीत के बारे में सोचें तो आप खुद ही अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अर्जुन गोपाल की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी संगीत सीधे तौर पर वहाँ की वादियों, झरनों और पहाड़ों के जीवन से जुड़ा होता है।

यह सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि पहाड़ों की जीवन शैली का प्रतिबिंब है। भुवनेश्वरी तंवर, मैना देवी और उर्मिला ठाकुर को आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले लोकगीत में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

भुवनेश आनंद को अभी आपने सुना। सबसे इम्पॉर्टेंट इन लोकगीतों में जो है वो है पारंपरिक वाद्य यंत्र, जैसे ढोल, रणसिंघा, बांसुरी, शहनाई। इनकी थाप और धुन किसी भी महफिल में जान डाल देती है, पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। कार्यक्रम का अगला लोकगीत चंचला कुमारी की आवाज़ में।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध

0: तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पहाड़ी संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। 12 बजने वाले हैं, समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बॉल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 12:10 हो चुके हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत का। हम तुम, जी हाँ, ऐसे फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में, प्रसून जोशी के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी

0: जब हैरी मेट सेजल फिल्म का गीत अभी आपने सुना नूरा सिस्टर्स की आवाज में, फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को दयावती और
1: मीनाक्षी वर्मा का
0: नमस्कार। कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की सही परिभाषा।
1: जी बिल्कुल दयावती, जहाँ बात जिंदगी की हो रही है वहाँ जिंदगी बिना दोस्त के या दोस्ती के अधूरी सी लगती है।
0: जी
1: दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं बल्कि दिल से बनता है।
0: जी
1: कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से रिश्ते निभाता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार, लेकिन एक सच्चा दोस्त कई बार इन सभी रिश्तों से बढ़कर महसूस होता है, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के समझता है, हमारी बात को सुनता है और हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, वहीं जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब इंसान अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता है,
1: जी
0: और कई बार घर परिवार में भी कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं, ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं ना, तो
1: जी
0: ऐसे समय में एक दोस्त ही होता है जिनके सामने इंसान जो है ना वो खुल कर हंस सकता है, रो सकता है और अपने मन का बोझ हल्का कर सकता है।
1: जी बिल्कुल, और ख़ासकर महिलाओं की ज़िंदगी में भी ये दोस्ती का ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक महिला घर परिवार और समाज की कई जिम्मेदारियां निभाती है,
0: जी
1: कभी बेटी बनकर, कभी बहू, तो कभी पत्नी और कभी माँ बनकर। वो रिश्ता पूरी निष्ठा से निभाती है, लेकिन इन सब के बीच अगर उसे एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है, खूबसूरत बन जाती है और बड़े अच्छे से बीतती है।
0: बिल्कुल सही। अच्छी सहेली केवल सुख में साथ नहीं देती है बहनों, बल्कि मुश्किल समय में भी हिम्मत बनकर खड़ी रहती हैं। जब मन उदास हो ना, तनाव हो या फिर जीवन में कोई परेशानी हो, तो तब भी बहनों दोस्त के दो चार शब्द जो है ना वो इंसान को नई ताकत दे देती हैं, और यही कारण है कि दोस्ती को दुनिया का सबसे सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा गया है।
1: जी, और आज के समय में जहाँ लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, वहाँ रिश्तेदारों में, रिश्तों में दूरियाँ भी बढ़ रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं,
0: जी
1: लेकिन दिलों की नज़दीकियाँ कहीं ना कहीं कम हुई है। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका दोस्त है वो आपके साथ रहे, ताकि जो आपके दिलों की दूरियां हैं जो बड़ी हुई है वो भी कम हो जाए, आपका समय भी अच्छे से बीते और
0: जी
1: आपकी समस्याओं में भी वो आपके साथ बना रहे।
0: बिल्कुल, यानी कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी कमियों को भी स्वीकार करें बहनों, जो हमारी गलतियों पर हमें समझाएं, सही रास्ता दिखाएं और कभी हमारा भरोसा ना तोड़े। दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने या बातें करने के नाम नहीं है, बल्कि ये विश्वास, सम्मान और अपनापन का रिश्ता है जिसे हम उस व्यक्ति में ढूंढते हैं, यानी कि दोस्ती में ढूंढते हैं।
1: कई बार देखा गया है कि इंसान अपने परिवार से कुछ बातें छुपा लेता है, लेकिन अपने दोस्तों से वो नहीं छुपाता,
0: जी
1: क्योंकि उसे पता होता है कि उसका दोस्त उसे बिना किसी तरीके से जज किए हुए उसकी सारी बातें समझेगा। अक्सर हम देखते हैं ना दयावती, की बहुत सारी बातें हमारे दिल में दबी होती है, वो घर परिवार में अगर हम किसी से ना भी कहें पर अपने दोस्त से, अपनी सहेली से ज़रूर उसे बता देते हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि मीनाक्षी वो जो रिश्ता है ना वही तो विश्वास वाला रिश्ता होता है जो हमारी दोस्ती को इतना खास बना देता है। और बहनों दोस्ती जो है ना वो हमें ये भी सिखाती है कि रिश्ता केवल खून से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं, वहीं अगर रिश्ते में सच्चाई और अपनापन हो तो वो रिश्ता उम्र भर साथ निभाता है। तो आप यूं ही बने रहें हमारे साथ और बढ़ते हैं गीत की ओर।
1: जी बिल्कुल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027

0: हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जी हाँ मीनाक्षी, ये जो दोस्ती है ना, ये ऐसी ही होती है, क्योंकि दोस्ती केवल एक रिश्ता नहीं है बल्कि जीवन की सबसे सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक है।
2: जी,
1: एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहे और हमें समझने और सही जो है हमें समझे भी, साथ में सही राह भी हमें दिखाए, कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ दें।
2: साथ ही हमें अपने रिश्तों में विश्वास, सम्मान और अपनापन बनाए रखना चाहिए।
1: जी,
2: छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को तोड़ने देने के बजाय उन्हें प्यार और धैर्य से संभालना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती जीवन को आसान भी बनाती है और खुशहाल भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोस्ती प्यार का एक समर्पित एहसास है जिससे अपने जीवन के बारे में हम कुछ भी साझा कर सकते हैं और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जिनो एक मित्र वो होता है जो बिना किसी लाग लपेटे के दूसरे को समझता और सराहना करता है।
2: सच्चे दोस्त

0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोस्ती प्यार का एक समर्पित एहसास है जिससे अपने जीवन के बारे में हम कुछ भी साझा कर सकते हैं और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जिनो एक मित्र वो होता है जो बिना किसी लाग लपेटे के दूसरे को समझता और सराहना करता है।
1: सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे के लिए लालची नहीं बनते, वो एक दूसरे को उनके जीवन में कुछ बेहतर देना चाहते हैं। मित्रता के बीच में कोई दीवार या कोई उम्र का भेदभाव नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: उम्र बेशक कोई भी हो, दोस्ती अपनी जगह रहती है।
0: जी,
1: वो एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं और संतुष्टि पूर्वक तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं।
0: बिल्कुल सही है। दोस्ती का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखना और सहायता करना है। ये भरोसे, एहसास और एक दूसरे के प्रति जो है ना बराबर समझ पर आधारित है बहनों।
1: जी, जो लोग सच्ची दोस्ती करते हैं वो बिना किसी प्रकार के लालच के दूसरे मित्र का ध्यान रखते हैं, सहायता करते हैं, परवाह भी करते हैं और भरोसे के दिनों में दोस्ती और मजबूत होने लगती है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक मीनाक्षी कहते हैं ना कि एक भीड़ में एक अच्छा दोस्त ढूंढना जो है ना कोयले के खदान में हीरे तलाशने के समान होता है।
1: जी,
0: सच्चे दोस्त केवल वही नहीं होते जो अच्छे मौके पर ही उपलब्ध हो, बल्कि वे होते हैं जो बुरी परिस्थिति में भी साथ खड़े रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सच्चे दोस्त को ढूंढना, उन्हें तराशना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी भी सच्चे दोस्त में ये चीज़ें जो है ना ढूंढ सकते हैं, पर इतनी आसानी से नहीं।
1: जी, और बहनों, सच्चा दोस्त ज़रूरी नहीं है कि कोई और हो। वो आपके पति हो सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: आपकी पत्नी हो सकती है, आपके घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, यहाँ तक कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं।
0: जी,
1: यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर का कोई व्यक्ति होगा वो ही हमारा दोस्त होगा। कोई ऑफिस फ्रेंड है या कोई कॉलेज फ्रेंड है, वो ही दोस्त नहीं होते। दोस्त वो होते हैं जिनसे हम अपने मन की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं।
0: जी हाँ। और सच्ची मित्रता पानी और मछली जैसी होती हैं, जो एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। विपत्ति के समय साथ देने वाला ही जो होता है ना, वो ही एक सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र जो होते हैं ना, वे संकट के समय आगे खड़े होते हैं और हमेशा साथ खड़े भी रहते हैं। दोस्ती जो है ना, आदमी को भगवान का दिया हुआ एक विशेष वरदान है।
1: जी,
0: आप एक दोस्त के साथ दुख और सुख की सभी प्रकार को जो है, जितनी भी आपकी जो परेशानियां हैं, आप उस व्यक्ति के साथ जो है साझा कर सकती हैं।
1: जी, और अच्छा दोस्त एक इस फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और
0: जी
1: तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, छोड़ दिया तो कोई और लेके चला जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी। सच्ची दोस्ती केवल साथ निभाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और मुश्किल समय में संबल यानी कि साथ खड़े होने का नाम है। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि दिलों के जो जुड़ाव होते हैं ना, उनसे बनता है।
1: जी, और हमारी वे सभी बहनें जो इस समय कार्यक्रम सुन रही है, उनसे भी हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। भले ही हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं, या यूं कहें कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हैं, लेकिन विश्वास, अपनापन और प्रेम की डोर हमेशा हमारे बीच में हमें एक दूसरे से जोड़ती है।
0: बिल्कुल रखती है जोड़े हुए, क्योंकि तो ये जो रिश्ता है ना, ये ऐसा ही होता है। खास अटूट जो मित्रता होती है ना, ये ऐसी ही होती है, क्योंकि हमारी जो बहनें वो प्रतिदिन हमारा साथ भी तो देती हैं।
1: जी,
0: तो आइए अपने रिश्ते में मित्रता की मिठास बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, सुख दुख के साथ खड़े रहें और प्रेम व विश्वास की डोर को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाएं।
1: जी, इसलिए याद रखिए कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ रिश्ते हमेशा खास बने रहते हैं।
0: जी,
1: तो बस आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ गीत सुनते हुए उन्हें गुनगुनाते रहें।
0: जी, तो सुनवाते हैं बहनों को ये गीत।
1: जी, बिल्कुल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दयावती, अक्सर हमने देखा है कि लोगों को अलग अलग तरीके के शौक होते हैं।
2: जी,
1: किसी को खाने पीने का शौक होता है तो किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को कुछ पहनने का शौक होता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को बागवानी का भी शौक होता है। हमारी भी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने घर में बहुत पौधे लगा रखे होंगे, उन्हें वो पानी भी देती होंगी, मिट्टी की गुड़ाई करती होंगी, खाद देती होंगी, और जब वो पौधों की इतनी ज़्यादा देखभाल करती हैं उसी वजह से वो हरे भरे और स्वस्थ भी रहते हैं।
2: बिल्कुल रहते हैं।
1: और बागवानी से बहनों ना केवल पेड़ पौधों को ही फ़ायदा मिलता है, बदले में वो हमें भी कई फ़ायदे देते हैं। यानी कि जो बहनें बागवानी करती हैं उससे उनका घर सुंदर बन रहा है, पौधे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे उनके स्वास्थ्य के लिए भी हो रहे हैं।
2: बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि आज हम स्वास्थ्य चर्चा में क्यों ना बहनों को बागवानी से हमारी सेहत को होने वाले फ़ायदों के बारे में बात कर लें।
1: जी बिल्कुल।
2: देखिए बहनों, जब हम पौधों की देखभाल करते हैं ना, तो शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन का स्राव होता है, जिससे संतुष्टि और आराम महसूस होता है, यानी कि संतुष्टि मिलती है हमें। और बगीचे में पौधे के साथ वक्त गुजारने से भी चिंता का स्तर भी कम हो जाता है ना। यानी कि जो ज़्यादातर आजकल वैसे भी तनाव है हर किसी के, और हो सके अगर आपके पास समय है, आपको बागवानी करना अच्छा लगता है, बगीचे में जाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप जाइए, थोड़ा समय बिताइए या गार्डनिंग करिए, आपका जो चिंता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और हमें जो हो, जब हम वहाँ पर जाते हैं बागवानी करते हैं, तो हमें सुकून का एक बड़ा अच्छा एहसास होता है और हमारी उदासी भी जो है वो दूर हो जाती है।
1: जी ये तो होता ही है, साथ ही साथ बहनों बागवानी हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है।
2: जी,
1: क्योंकि जब हम पौधे में कोई खाद डालते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कहीं पौधे को नुकसान ना हो जाए, उसकी जड़ में सही तरीके से सुरक्षित रहे। तो ऐसे में जो एकाग्रता से काम करते हैं हम, उससे हमारी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है।
2: जी बढ़ती है। और सभी जानते भी हैं कि सूरज की किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है, जो हमारी हड्डियों और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम बहुत कम धूप में बैठ पाते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं धूप में बैठने के लिए।
1: जी बिल्कुल दयावती, पर जब पौधों की देखभाल की बात आती है तो हमें धूप में निकलना ही पड़ता है।
2: जी।
1: और इसी बहाने से हम कुछ देर धूप के संपर्क में आते हैं और हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी होती है वो कुछ हद तक ठीक हो सकती है, कम हो सकती है।
2: जी, यानी कि हुए ना दो फायदे।
1: जी बिल्कुल,
2: एक तो आपका समय भी बच गया और दूसरा आपको विटामिन डी भी मिल गई।
1: जी
2: तो देखो बहनों, बागवानी किसी कसरत से कम थोड़े ही हैं। एक एक पौधे के पास जाना, वे पानी देना, हाथों से गुड़ाई करना,
1: जी,
2: और जो है साथ ही खरपतवार निकालना, इन सारी गतिविधियों से शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे क्या होगा, अच्छी खासी कसरत हो जाएगी आपकी और शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहेगा।
1: जी, खासकर जिन लोगों के पास व्यायाम करने को समय नहीं है, अगर वो बागवानी ही कर लेते हैं तो तब भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। और जब बात तंदुरुस्ती की हो रही हो, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियां साफ वो शुद्ध होती है।
2: जी।
1: क्योंकि उन पर कोई भी रसायन युक्त कीटनाशक का छिड़काव हम नहीं करते, सही तरीके से हम उसमें खाद डालते हैं जो कि घर पे बनी होती है, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा होता है। जो भी सब्जी हम खाएंगे उसके पोषक तत्व पूरी तरीके से उसमें बने रहेंगे।
2: बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, इससे दो तरह से जो है पैसे की बचत होती है। पहली क्या होगी, पहली ये होगी कि सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेगी, घर में ही

0: हैं सब्जियाँ, और एक ही पौधे कई बार हमें क्या करते हैं, सब्जियाँ दे देते हैं, और दूसरी बाज़ार से सब्जियाँ लाने पर उनमें से कुछ ख़राब निकल जाती हैं या एक दो दिन में ये इस्तेमाल करने योग्य ही नहीं रहती, है ना। अगर सब्जियाँ घर में ही लगी होंगी तो आप इन्हें उतना ही तोड़ेंगी जितनी आपको ज़रूरत होगी।
1: जी, ये तो बहुत सही कहा दयावती आपने कि बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। साथ ही बागवानी करने से तनाव कम होता है, चिड़चिड़ापन और जो गुस्सैल स्वभाव है ना, वो धीरे धीरे सौम्य और शांत होने लगता है।
0: जी,
1: फूलों पौधों की बागवानी के दौरान मन शांत होता है और रचनात्मकता की ओर बढ़ने लगता है।
0: जी
1: इससे ऊर्जा सही जगह पर खर्च होती है और दिमाग को शांति का अनुभव होता है। और साथ ही साथ हम जब दिन में काम करेंगे तो हमें नींद भी अच्छी आएगी और हम स्वस्थ भी बने रहेंगे।
0: जी हाँ, यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिन व्यक्तियों को जो होता ना नींद भी कम आती है,
1: जी
0: तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। आप गार्डनिंग करें, पौधे उगाएं, सब्जियाँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। यानी कि आपने बहनों जाना भी है, बहुत से लोग जानते भी हैं ये कितनी स्वास्थ्यवर्धक होती है गार्डनिंग करना।
1: जी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो मीनाक्षी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और आज बात करेंगे जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं ना बहनों, उसके रख रखाव के बारे में।
2: जी,
1: हाथ में घड़ी हम सभी शौक से पहनते हैं बहनों, लेकिन रखते समय लापरवाही आ जाती है। यानी कि आप इसे जो है जितने लाड प्यार से रखेंगी ना, ये उतनी ही लंबी चलेगी।
2: जी, घड़ी को साफ करते रहे उसके लिए आपको क्या करना है कि मुलायम कपड़े से हमेशा घड़ी की धूल पोंछे, उसका शीशा साफ करें।
1: जी,
2: नमी से घड़ी को जितना हो सके उतना दूर रखें। साथ ही ये भी ख्याल रखें कि ज़्यादा गर्म या सीधी धूप वाली जगह में भी आप घड़ी को ना रखें।
1: इसके अलावा जो है चुंबक घड़ी के कार्य को ख़राब कर सकते हैं, इसके कारण घड़ी जो है गलत समय भी दिखा सकती हैं, रुक भी सकती हैं या इसकी मशीन भी ख़राब हो सकती हैं। इसलिए इसको चुंबक जैसे स्पीकर, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से दूर रखें।
2: जी, जब घड़ी की बैटरी बदलें तो बहुत सावधानी बरतें। आप घड़ी में सही प्रकार की बैटरी का उपयोग कर रहे हैं ये सुनिश्चित आप ज़रूर कर लें। अगर हो सके तो आप एक अच्छी कंपनी की ही बैटरी का इस्तेमाल करें।
1: जी, और जब घड़ी की बैटरी जो है तो ये तो बात हुई, लेकिन घड़ी को हमेशा उसके बॉक्स में जो है यानी कि केस में रखें उसे, ऐसे ही अलमारी या टेबल पर ना रख दें। अगर घड़ी का बॉक्स नहीं है तो इसे स्टैंड या फिर किसी मुलायम कपड़े में लपेट कर रखें। इससे घड़ी की में जो है ना खरोंचे भी कम लगेगी और पॉलिश भी ख़राब नहीं होगा।
2: जी, तो ये तो हुई बहनों छोटी छोटी बातें जिससे आप अपनी घड़ी का ख्याल रख सकती हैं। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।
1: जी,

0: तो बहनों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम संपन्न करने का। दीजिए हमें अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सम्मेलन। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने

0: कहा कि त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति

0: ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: उदित नारायण की आवाज में और प्यार हो गया फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और नुसरत फतेह अली खान का संगीत।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जानें।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: दुश्मन फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजें थी।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का

0: अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

इन पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov

शिकारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू की आवाज़ में समीर के बोल थे आदेश श्रीवास्तव का संगीत। जिंदगी में सबसे बड़ा एक सच ये भी है कि लोग हमारे हालात देखकर साथ बदलते हैं और हम इसे किस्मत समझ बैठते हैं। खैर, किसी की सोच तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम जैसे हैं उसी में हमें खुश रहना सीखना होगा। संघर्ष फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं सोनू निगम की आवाज़ में, समीर के बोल जतिन ललित का संगीत।

काफ़ी गीत ऐसे भी होते हैं जो हमने बहुत पहले सुने होते हैं, अचानक काफ़ी समय के बाद अगर उन्हें सुने तो वही पल आंखों के सामने घूमने लगता है जब हमने पहली बार वो गीत सुना था। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके सुनहरी यादों को हम आपको याद करवाएं इन गीतों के ज़रिए। प्यार तो होना ही था, आशा भोसले उदित नारायण की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, समीर के बोल हैं जतिन ललित का संगीत।

रोजाना हम ना जाने कितनी बार किसी ना किसी बात से दुखी होते हैं। इंसान है तो गलती भी होती है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है।

0: म्यूजिक मस्ती में आज बस इतना ही।
1: नमस्कार, मैं नरवीर सिंह, एडिशनल एसपी हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा के खिलाफ जंग में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस अन्य विभागों के साथ 5 जून को रिज मैदान शिमला से मिनी मैराथन का आयोजन कर रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और आकर्षक इनाम 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेस में, दौड़ में प्राप्त करें और जन जागरण के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन दे करके एक संदेश दे, ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस इस कुकृति को लड़ने में सक्षम होकर के आपके सहयोग से कार्य कर सके। जय हिंद, जय भारत।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ, और एफएम शिमला पर अब वक्त है सबरंग कार्यक्रम का।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता

सब रंग में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ 2:15 होने वाले हैं। दोपहर हिंदी समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके

0: दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ

0: कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग

0: अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: MHz पर आप FM शिमला के साथ 2:30 हुए हैं। ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास आपको करवाते हैं शिखरों के स्वर में। करनैल राणा की आवाज में कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

आजकल पहाड़ी संगीत को आधुनिक धुनों के साथ मिलाकर नया रूप दिया जा रहा है, जिसे फोक फ्यूजन भी कहा जाता है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अंजना भारद्वाज की आवाज़ में।

मैं लेडी कांस्टेबल आनंदनी हिमाचल प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूं। इसी बीच हम बहुत से विद्यार्थियों, युवाओं और पेरेंट्स से मिलकर एंटी चिट्टा अवेयरनेस की बातें करते आ रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जब तक किसी घर में किसी घर का बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एंटी चिट्टा अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, यह एक जंग है ड्रग्स के खिलाफ। वो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 5 जून को रिच पर सुबह 6:30 बजे आके मिनी मैराथन में पार्टिसिपेट करे और इस अवेयरनेस को पूरे प्रदेश में फैलाए। जय हिंद, जय हिमाचल।

भरत राम को अभी आपने सुना। हिमाचल प्रदेश का लोक संगीत यहाँ के लोक जीवन, लोक संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। कार्यक्रम का अगला लोकगीत बिमला देवी की आवाज़ में।

एक सूचना सुनिए कि आज रात रात्रि 8 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक तिवारी से भेंट वार्ता करेंगी सपना ठाकुर। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर।

0: गीत लोकगीत सुनते सुनते कब कार्यक्रम खत्म होने को आ जाता है ये पता ही नहीं चलता। फिलहाल शिखरों के स्वर में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला के साथ, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाले जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी एजेंसियों और हितधारकों से जनजातीय कल्याण के लिए प्रत्येक पक्ष पर ध्यान देने को कहा।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुँचाना आपका उत्तरदायित्व है।
2: राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि जनजातीय युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। उन्होंने कहा कि HRTC के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें शामिल की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई हैं और इनके लिए चिन्हित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों

0: में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं।
0: प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ व हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल को नियमित आदत बनाने से संतुलित और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन को भी समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है बल्कि एक स्वस्थ और हरित राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देता है।
3: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान 9 जून को माँ यानी मदर्स अगेंस्ट अब्यूज एंड एडिक्शन विषय पर महानाटी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है जनजातीय गरिमा को प्रौद्योगिकी का समर्थन। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
5: देश भर में फैले जंगलों, पहाड़ियों और दूरदराज की बस्तियों में एक शांत सफल परिवर्तन चल रहा है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से भारत की विकास गाथा के केंद्र में अपने उचित स्थान का इंतजार कर रहे थे। आज वे राष्ट्र की प्रगति के सक्रिय वास्तुकार के रूप में उभर रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव की यही भावना है, विकसित भारत की यात्रा का एक राष्ट्रीय उत्सव जहां प्रगति भूगोल या परिस्थिति का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का समान रूप से अधिकार है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और संबंधित पहलों में 549 जिलों और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,911 ब्लॉकों के 63,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिक लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ इन प्रयासों का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसी आवश्यक सेवाओं का संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। इस वर्ष जनजातीय गरिमा उत्सव का

0: आयोजन लगभग 4 विषयगत सप्ताह के आसपास किया जा रहा है, जो एक साथ जनजाति विकास के पूर्ण आयाम को दर्शाते हैं। उद्घाटन का विषय विकास के एक वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी इस बात को दर्शाता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम, विज्ञान और नवाचार भारत के कुछ दूरस्थ समुदायों तक शासन और अवसर का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं। जनजातीय भाषाओं, संस्कृतियों, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का पर्याप्त सम्मान करते हुए विकास को अंतिम दूरी तक पहुंचना चाहिए। जनजातीय गरिमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिरसा यानी एक सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है। सिकल सेल रोग लंबे समय से जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य की एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और अब भारत अब समानता और पहुंच में निहित उन्नत विज्ञान के साथ उस चुनौती का जवाब दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। CSIR में हाल ही में एक संगोष्ठी में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और सिकल सेल योद्धाओं को एक साथ लाया गया, जो वैज्ञानिक प्रगति और प्रयासों के पीछे की मानवीय तत्कालिकता दोनों को दर्शाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी और आयुर्विज्ञान जैसे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक आदिवासी समुदायों द्वारा लंबे समय से संरक्षित समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, मान्यकरण और संरक्षण में मदद कर सकती है। समावेशन की यही भावना इस बात को आकार दे रही है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जनजातीय विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मंत्रालय ने एक सरल लेकिन दृढ़ विश्वास पर आधारित AI सक्षम प्लेटफॉर्मों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भाषा एक बाधा नहीं है जिसे दूर किया जाना है, बल्कि एक पहचान है जिसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक अभिकथन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। आगामी ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय कलाओं, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, संगीत, शिल्प और सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इस प्रयास को पूरा करते हुए जनजातीय भारत का प्रस्तावित GI संभावित कला और शिल्प एटलस भौगोलिक संकेत क्षमता के साथ जनजातीय हस्तशिल्प, वन उत्पादों और पारंपरिक कला रूपों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था जनजातीय गरिमा को प्रौद्योगिकी का समर्थन। वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत और सबसे पहले आपके लिए लेकर आए हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

अमर प्रेम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं अपना देश से, आवाज़ है आशा भोसले की। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम ठाकुर का नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि दिन बदले या रात, आंखें बदली या ख्वाब, बदलते बदलते कुछ ऐसे बदले हम समझ ना पाए कि तुम बदले या हालात। उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया गया, दिन भी बदले, बदले रात भी, आंखें तो वही है पर बदल गए हैं ख्वाब भी। बदलते बदलते सब ऐसे बदला, हम भी बदले और बदल गए हमारे जज्बात भी। श्रोताओं, कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात आपने बचपन से अभी तक ज़रूर सुनी होगी। लेकिन इस बात को समझना इतना भी आसान नहीं है। सालों बीत जाने के बाद हम इसकी गहराई को समझ

पाते हैं और कई बार नहीं भी समझ पाते। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी समझ बिल्कुल एक समान हो। जिस तरह जीवन जीने का सबका अपना तरीका होता है, उसी तरह चीज़ें समझने का भी सबका अपना एक अलग अंदाज होता है। आज के युवानी कार्यक्रम में हम बात करेंगे अच्छे बुरे, सही गलत, चाहे अनचाहे बदलावों के बारे में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम का पहला गाना।

0: दोस्तों, हम जीवन के जिस पड़ाव पर होते हैं, हमें अपनी सहूलियत के अनुसार सब अच्छा लगता है। जो स्थिति हमें कंफर्ट दे वो अच्छी ही लगती है, पर जैसे ही कहीं से थोड़ी सी असहजता या ऑकवर्डनेस महसूस हो, हमें सब बुरा लगने लगता है। लेकिन क्या हमारी सहजता या असहजता के अनुसार परिस्थितियाँ रहेंगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है। उसका समय सभी के लिए अलग हो सकता है, पर उसका होना टाला नहीं जा सकता। इस पर चंद पंक्तियां आपके साथ साझा करेंगे। कोई बचपन में ही दुनियादारी समझ गया, कोई बचपन में ही दुनियादारी समझ गया, किसी की पूरी उम्र कम पड़ने लगी। किसी को सोने का ताबूत नसीब हुआ तो किसी को सोने के लिए कंबल भी ना मिला। कोई बिन बोले सारी बात समझ गया तो किसी को समझाते हुए हमारा भ्रम निकल गया। कोई करता रहा 100 मिन्नतें उस मालिक से तो किसी के बिन मांगे उसे रब समेत सब मिल गया, उसे रब समेत सब मिल गया।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, शब्द अलग हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें निहितार्थ एक समान ही होता है और हम शब्दों को अपने नज़रिए से समझते हैं। श्रोताओं, कल्पनाओं पर अल्पविराम देते हुए चलिए अब समझते हैं आज के विषय के अर्थ के बारे में। परिवर्तन का अर्थ है किसी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, विचार या व्यवहार में बदलाव का आना। ये बदलाव अचानक से भी हो सकता है और धीरे धीरे भी, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। प्रकृति परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बरसात और फिर पतझड़। इन सब का अपना महत्व है। ये परिवर्तन संतुलन को बनाए रखते हैं। परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण हमारा जीवन होता है। माँ की कोख से लेकर मृत्यु तक का सफ़र परिवर्तनों का ही तो ताना बाना है। पैदा होने के बाद से ही मानव शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। इसी बीच वो शैशवावस्था से किशोरावस्था होता हुआ एक व्यसक के रूप में अपना जीवन जीता है। उसकी सोच, विचार, शारीरिक बनावट, मानसिकता, समझ, सभी में बदलाव आते रहते हैं। ये बदलाव इंसान को विकास की ओर ले जाते हैं।

जी हाँ, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती। श्रोताओं, हमने जाना कि परिवर्तन क्या है और कैसे हमारे जीवन में काम करता है। अब हम जानते हैं हमारे युवाओं, अब हम चाहेंगे हमारे युवाओं से बात करना और उनके दिल का हाल जानना। हाँ, हम आपसे सीधे तौर पर बात नहीं कर सकते, पर आपके ख्याल के बारे में हम जानते हैं। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब ना तो आप इस संसार में बहुत नए हैं और ना ही आप इतने पुराने कि बदलावों को ज्यों के त्यों अपना लें। तो ऐसे में युवाओं के जीवन में जब बदलाव आते हैं तो वे असहज हो जाते हैं, जो कि एकदम से स्वाभाविक भी है। कन्फ्यूजन इतना कि कई बार हम एक ही लूप में स्ट्रक हो जाते हैं। करियर हो या रिलेशनशिप, हर जगह इसका प्रभाव दिखाई देता है।

आज के युवाणी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं युवाओं के परिवर्तन के प्रति एटीट्यूड के बारे में। श्रोताओं, युवा सिर्फ बदलाव से परेशान नहीं होता, परेशान होना बदलाव का पहला फेज है और उससे जूझ कर फिर युवा कोशिश करता है रास्ता निकालने की। कुछ बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं पर कुछ को समय लगता है, पर वो उस परिवर्तन को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उससे सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप अभी परेशान हैं तो वो इस बात की शुरुआत है, पर आप कर लेंगे और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की OMR शीट नहीं है जिसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन मिल ही जाते हैं। यहाँ आपको ऑप्शंस खुद बनाने पड़ेंगे और आप बना भी लेंगे, क्योंकि एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है।

आज की सीख को युवाओं तक सीमित ना रखते हुए हम आपको कहना चाहते हैं, क्या हुआ अगर साथ तुम्हारा सब छोड़ गए? क्या हुआ अगर तुम्हारी बारी में सिलेबस ही चेंज हो गया? तो क्या हुआ तुम्हें सब अकेले ही करना पड़ा? सक्षम हो तुम सब कर सकते हो। गीदड़ों के झुंड में नहीं, तुम अकेले भी तो लड़ सकते हो। हाँ, तुम अकेले भी तो लड़ सकते हो। आखिर में सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि परिवर्तन हमेशा अच्छा ही नहीं होगा, पर आपको कभी उसे स्वीकार करना होगा और कभी उसका विरोध भी करना पड़ेगा। जो उचित लगे वो आप कीजिए, बाकी जो होना है वो थोड़ी ना किसी ने कहीं को खोना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूनम आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए 103.7 MHz FM शिमला के साथ युवानी। नमस्कार।

0: लापता लेडीज फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत लिखा प्रशांत पांडे ने और राम संपत का संगीत।
1: मेरा नाम लेडी कांस्टेबल रमा है और मैं 2022 बैच की भर्ती हूँ। तब से मुझे 4 साल हो गए हैं पुलिस में काम करते करते। उससे पहले मैं यहीं पे HP यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रही हूँ। मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी कैसे मतलब युवा नशे की ओर जाते हैं तो ये देखा है। अभी मैं पुलिस में 4 साल से काम कर रही हूँ और सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज और स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कि नशा क्या है, बच्चे कैसे इसमें फंसते हैं और उनको अवेयर करना कि नशा क्या होता है। उसी में हम अपनी ड्राइव चला रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो आज का हमारा युवा है वो पुलिस के साथ मिलकर काम करें, वो केवल क्वेश्चन ना उठाएं, वो भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस के साथ आके इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
0: बड़े बड़े वादे नहीं, छोटी छोटी बातों की फिक्र ही है जो प्यार कहलाती है। एनिमल फिल्म का गीत विशाल मिश्रा की आवाज़ में।

एक सूचना सुनिए, आज रात्रि 8 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक तिवारी से भेंट वार्ता करेंगी सपना ठाकुर।

बागी 4 फिल्म का गीत अभी आपने सुना बी प्राक की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत दे दे प्यार दे 2 फिल्म से है, आवाज़ है अरमान मलिक की।

कार्यक्रम से अलविदा लेने का समय तो आ गया है। फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला के साथ, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

जुले पितिमी मसांगमाला ई आकाशवाणी शिमला इनु मु थेरिंग पालमो थेरिंग की डैग्रिम गौचुक नाइन थेरिंग यांग हो जायाला हिक्किम डाकघर की कौला रंग आत्मनिर्भर भारत रंग ग्याकर की लन न्यामपूला लू न्यनपू न्यन नाइन मनशोला हिक्किम पीति की सबसे यानी कि मीनांग मेथी ऊंचा डाकघर की कौला न्यायाला छिग निसुम शेन नाइन हिक्किम युल ते पीति नांग दू यांग ऊ पीति की उपमंडल जिला लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की युल मीनांग मेथी थोनबू ना योका ई युल छु ग्यासो छिनमु नासो फुटतोंग चुबजी रंग ngabgya टुकचु रिबदुन तोंग फुट रिया थोनबू ना योका युल ते मीनांग मेथी सा संगमा रिया यांग चुमिक नेमा दिमु याकपू योका युल की मी ग्या याकपू नांगबा सांगे की छो फेकन योका यांग थुकपा मितुंगा न्यामपुला दिमु छाई देखा हजा याला ग्यू योका की ई ते यांग रिया थोनपू ना डाक घर चिक योका ई डाक खाना ते जिमलिंग ला मीनांग मेथी मशहूर योका चिला सेन ना हिक्किम युल ते उन ला सेकंड चौक सी मीनांग मेथी थोनबू ला योका होती सु ई

kurang suvidhayan se na ti chi kusha yogan chala yala timu chai pecha yang sumpa te chi nupa se na parnali se na yang soma takniki digital ya hoi nor ya soma soma chi soma nor yo nauti ya ki lab cha yang digital se na thalo ki yang chi thalo machine chala ya mangbo ko yauti ya ki lab cha aur thene jibati chin was in kyoktong yala shakti rang dimu chashi upyog chi leha khonjaya penna otiki dimu chai upyog pecha nga pate chin upasena yoichi apurti sen oichi mang rang oti oti oti te gyakar ki utpadan rang upyog yala mangdu tangja oi miya ki chi gusha yokan chala yala oti yala mangdu tangja yang diki shingla pekan yala chi gusha yona otuk Suksi peja, singla pekan yang la adun tekniki sana yang, hoi cahaya soma yang soma cii mesini soma cahaya hoti ya ki cahaya ki bari la kunci la lonte cah lapca gipca, dekunci la seca kini apnai cuya di cahaya utpadan ya mangdu tangja, udyog shetta nang tu kunci la soma karkhano yang startup rang kunci la liha yang dimu cah kunci peja la. Lonteja, lapkin nangdu, lapkin tu yala, nokri thobna, mangdu tangja, nokri ki leha phila, konjayala pro, yang konjayala dimu chai lonteja ki ya nokri pecha, oti phila prerit chuya phila. Dang tering gyakar ki digital shetar nangdu minang meti, gyowa gyowa rang laha dupna oka, yang gyowa gyowa pecha, oti te online sewaen se na, yang amu khangbaru deji, orang online chil laha penna oti gan dupna oka, takniki navchar rang soma udyo, gyakar la soma lam tonga, yang oi tuya la di thadho, tuya minang meti takniki apnai chua, tenkonja lam kandu sukchaya oye mobile la chi gushayo na to ta nyinga, disu khyoktong yala yang soma moka ka thopka khonja yala chi nor guna oti ki knowledge ka minang meti thopka thene diki nyam bula arthik yojna e mang tu samlo tangna chi gi no di matlab te hoy tu yala atmishwas rang mehnat rang kya kar ki shamta la vikas peche rang khonja yala vishwas peche ka ino ajaya chiga ki chala yala nena me te chai yang chigi mi yala nena me ta ori kya kar ki chala yala mang tu upyog peche ki lapcha dikha chila sen aur kya kar ki chala yala mang tu upyog peche ni orang yang mang tu tara ki hoy kya kar de mang tu tara ki hoti phila hoy tu yala vishwas ka te cha tene hoti mathya hoji gunvatta ya leham behtar dimu chai chuya ki lapcha ka hoy tole te di ki I karyakram ki yojna chi ki no hoti kya kar ki chala yala jimlang nang du yang shet chuk cha yang hoy shet cha chi chi leha pe cha wa yan lapkan vidyarthi tu yala tu chukun yala lapkan yala khoyal thoso dimu chai chi khatar pe cha Konjela tuju le laha pecha ki lont kate cha nipate soma rang chala kya ki lapcha soma chi norong noi soma machine tekniki ki lapcha dimu chai pecha kushal viksit ka konjaya pecha phila jipate chin wasandi utpadan la khatar pecha rang mehtav chin wasna atmanirbhar kya kar ki abhiyan te yang dun chetar phila nang du sarkari sudharon ki yang konja sahayak ki lon sarkar su atmanirbhar लक्ष्य फिला यंग प्रगति कृषि आपूर्ति श्रीलंका सुधा एर यंग अति फैला प्रणाली यंग स्पष्ट कानून की अति फैला मजबूत फैला वित्तीय प्रणाली सुधार का चावा दिया अभियान नांग दो लोन ची गाते वास्तव न लोकल के लिए वोकल की सामलों का यंग खाकचिन मुझे इनो सका दीते औजी क्या कर कीजिए उत्पादन यो नौती की महत्व का तेजा औरती की गुणवत्ता की फिला शिक्षा का दी सुजिमलिंग नांग दो और क्या कर की पहचान का दिमुचाई होगा औरती की लोन का तेपा और क्या कर की जिमलिंग नांग दो मिनंग में ती यंग रोचक ची का इनो क्या कर ते जिमलिंग नांग दो चिन्मु लोकतंत्रिक देश का इनो और दीते और मीत मी गला झुन का होगा क्या कर नांग दो मिनंग में तिल्लाम यही चीन उबासे ना यहाँ दिमुचे क्या कर यंग योग आयुर्वेद रंग अतिंग उनमी योंदो याला मिना में थी प्रसिद्ध कायों का सरकार दे और क्या कर कि विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय रंग तकनीकी क्षेत्र लम इनांग तो लगातार आगे बढ़ाए चुए कायों का क्या कर कि ख्योक्तों या कि आबादी का जिमलिंग नांग तो मिनांग में थी योगा तिंग शोला

आत्मनिर्भर क्या करते योजना चिक मांदा और मिया की समलो का चिक हिनो और जब तो लाजिम बारी गई की ग्याकर की फिला योगदान तेजा और तिसु और ग्याकर का मीना में ती मजबूत कर रहा है और ख्योतों या का मीना में ती मजबूत रहा तेने कौन चाहला दी फिला लापचा गिपचा हिनो दी ते आत्मनिर्भर करला चिकनी सुम शुआइन ता यंग इकाबला अनेपन मा टुलमा रंग खोजी या तो या कि लुनियन बुझी यदा जा

आने पनमा डोलमा किलु यनपो गबला था ग्याकर किलोन था ग्याकर किलोन ला तेरिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सु तेरिंग नई दिल्ली नांगदो एकीकृत जनजातीय यरकित फीला एजेंसियों ला रंग एकीकृत जनजातीय यरकित परिजनों याला थर्चा फीला रंग राष्ट्रीय सम्मेलन की उद्घाटन खोंगसु चावा दी अवसर ला राष्ट्रपति सुशुवा की ग्याकर नांग नदेकन जनजातीय समाज की लूसो ला मांग दू तंगजा दी सुख्यो खोंजा याला थर्चा की लेहा फेका खोंगसु शुवा की ग्याकर की युल मांग छे रूमी याला यंग यरकित फेचा फीला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सु शुवा तोले एजेंसियों रंग हितकार अधिकारियों सु यंग जनजातीय कल्याण की फेला खोन लिहा लिया मदद भेजा भी खोंग शुवा राष्ट्रपति सुशुवा की यंग चुक सीन जनजातीय यंग ख्योक्तों याला खेल गतिविधियों से ना यंग चेना रंग अति फेला ची प्रतिभा ना खोन जयलन दी सम्मेलन नंग तो निशु चोरुक राज्य तंग जी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि का भागने का खोंसु शुवा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सुशुवा की और जी प्रदेश नंगला हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें होती थे आम जन सेवा सन मीमंग याला दिमुछाशी परिवहन सुविधाएं प्रदान फेचा फेला यंग दिते सर्वश्रेष्ठ साधन येनो सा खोंग सुशुवा एच आर टी सी की बेड़े नंग तू यंग निबग्या गिपचु गिपदुन इलेक्ट्रिक रंग यंग निबग्या निपचु डिजिटल बसें शामिल योका सगा और तीसरा चीज सगा सन यहाँ बिजली लंडोइन और बस या सगा मुख्यमंत्री सुशुवा की इलेक्ट्रिक बसें यंग यात्री ची सुविधा और नौती लफीला बनाई चुवा सगा यंग खोंग की चार्जिंग स्टेशन का खोंगसु शुवा की दीका चुई होगा यंग दीकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यंग खुंजी नेतृत्व ला लोह जूजी नासु तोले यरकित तोले विश्वास तंग प्रयास की ची मंत्र सुग्याकर की उल्लेखनीय लिहा मिना मेती खोंगसु चुआ सका दी की दौरान खोंगसु केंद्र सरकार सु यंग मेतपू मी शिंगला फेकन यानी खोंजय ख्योक्तोंग याला यंग ची लेहा डुबकन याला कल्याण फिला खोंगसु दिमुचाहे लहाया गोचुआ छाव शुआ अंतर्राष्ट्रीय हिमाचल यंग तरी यरका की ठोम नांगदु 9 जून ला आमा यानी कि मदर अगेंस्ट अब्यूज यानी होती है कि महानाटक आयोजन का फेंका सवा दी की लेहाते और जिमी याला नशा के बारे ला खोंजया ची दुष्प्रभाव नौती की जागरूक फिला फेंका सका आने तंग टू चुकु याला दिमो छाशी खातर पेचा यंग खोंजयला सशक्तिकरण की लिहा रंग लन तेचा मिनंग मिति तोबला या दिमो छाए लापचा गेपचा इनु दिनाटक थे शिमला की उपयुक्त अनुपम कश्यप सुखों शुवा की महानाटक नादु शिमला की आ ची आई सी डी एस खंडन नांगना निपक्या रंग निपचू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंग खुंजी अधी लहा साइक फखनिया का भागने का सका खोंगसु शुवा किंदी कार्यक्रम की लौते यंग लौनते ची इनुबासन आने याला आमायाला सशक्त रंग सुरक्षित बचपन यंग खोंजा आमायाते दिमुचाय रंग टनते और ना और टू चुकु याला दिमुचाय सरका सका खोंजा याला नशा मुक्त समाज रंग और उज्ज्वल भविष्य की फिला समलो डुबचा फिला इनु दीते था क्या कर की लौन न्यूंजी था यंग अतिगबला आने टशी सोमु की लुन्यन बुझी यदजा

महाशिवी कार्यक्रम शून्यालय सभी श्रोतारा आकाशवाणी शिमलेखा खूब खूब स्वागत। सभी शून्यालय के तारे रेडियो दोस्त, तारे रेडियो साथी खेमराज शर्मा रा नमस्कार। तो श्रोताओ, तुम्हारी सेहतरी कामना करूँ, तुम्हें स्वस्थ रह चाहिए, खुश मस्त रह चाहिए, हंसते हंसते रह चाहिए। तो श्रोताओ, ए 4:50 खा 5:20 तई तुम्हा साथी आना, जो है आधे घंटे रा प्रोग्राम होना से कुछ खास होना, क्योंकि इत बढ़िया बढ़िया लोक गीत तो होने, बढ़िया बढ़िया जानकारी वाले विषय भी होने, तई साथी खबरसार भी होना। तो आना एक बढ़िया जा गुलदस्ता तैयार, जिते कई तरह रे फूल होने प्रोग्राम रे रूपा दा। तुम्हें चाहे घर असो या कि खेच खलियाणा दसो, रिश्तेदारी दसो या कि सफरा दा, तो आज के कार्यक्रम के यादगार तई बढ़िया बनाने की जिम्मेवारी होनी मेरी, यानी तारे रेडियो दोस्त खेमराज शर्मा री। बस तुम्हें इतना करो कि आकाशवाणी कार्यक्रम रे कार्यक्रम जो सो से इसे ही सुनते रहो। तो आज के जो मारे कार्यक्रम की रूपरेखा ते तेरा भी मारे जरूर जिक्र करना। आज मारे अपने सुनने वाले खे दुई विषय पंदे गलबात करनी, जो सो कि एक तो सो संगीत तनाव कम करो, दूजा सो फिट इंडिया अभियान, और तई अपने मारे सुनने वाले खे खबरसार भी सुनाने, बढ़िया बढ़िया लोकगीत तो सुनाने। तो आज के कार्यक्रम का तुम सभी के खूब आनंद आओ, तो यही कामना करूँ। तो आज के जो आनंद की शुरुआत तो सो से एक बढ़िया जे लोकगीत सती करूँ मैं, तो ऐ सुनो तुम्हें एक लोकगीत।

श्रोतो यो थे तारावती जी, आश राखू तुम्हें नारा लोकगीत जरूर पसंद आया होला। ए बेबारी असो मारे आज के जो विषय सो से असो जो संगीत असो से तनाव दूर करो। श्रोतो जो आज कालीरा टाइम असो से मारी बागा दौड़ियाला जिंदगी असो, तई कामकाजी जिंदगी दा मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगन दा। जे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ो तो बोला जाए सको कि संगीत सुनना बहुत फायदेमंद हो सको। संगीतारी मदद लौआ काफी हद तई हमें तनाव दूर करी सकू। जो लोग तनावा दा रो तिनारी क्या दशा हो सो चिड़चिड़े हो जाओ, तिनारी तई संगीत फायदेमंद साबित हो सको। हमें रोजमर्रा री जो जिंदगी दा जिसे डिप्रेशन हुआ चिंता हुआ तनाव वगैरह खा बचने री तई कई तरह रे जतन भी करूँ ताकि तनाव हामा पंदे बारी ना पड़ो। ते तेरी तई कई आदमी अपना तनाव दूर करने री तई संगीत सुनना पसंद करो। कई संशोधना खा ए पाया गया कि संगीत मानसिक तनाव कम करने री तई फायदेमंद सो। साथ ही ये तेरे

आदमी री जुसे एकाग्रता से भी बढ़ो। तई भी बहुत सारे फायदे ओ कई बारी हमें बहुत दुखी हुए जाऊ, निराश हुए जाऊ, तो बढ़िया संगीत सुनवा जीवा के थोड़ी जी तसल्ली हो। कुछ संगीत सुनने रे फायदे भी ओसो ते तेरे बारे दा जरूर मारे जिक्र करना। हमें देखो कि कई जगह पांदे तनाव दूर करने री तई संगीत प्रोग्राम चलाए जाओ ते तेरी ताल लय सुनवा लोका खे सुकून मिलो। बोला जाए सको कि संगीत सुनने खा हृदय गति तई उने आले तित दा भी जुसे वृद्धि ओसो से रोकी जाए सको। संगीता रा असर बुजुर्गा पांदे ही नहीं बल्कि बाल बच्चे पांदे भी बहुत ज़्यादा पड़ो। एक शोधा रे मुताबिक ए भी पाया गया कि संगीत मानसिक शक्ति बढ़ाने का काफ़ी सहायक हो। एतफा बाल बच्चे री जो स्मरण शक्ति तई बुद्धि हो ते तेरी जो से विकास हो ते तेरी क्षमता बढ़ो। आजकल ही तनाव मरी रोजमर्रा री जिंदगी का एक खास हिस्सा बनी गुआ। संगीत सुनने का तनाव वाले जो हारमोन जो स्वतित्रा स्तर कम हो गुआ। कई बारी चिड़चिड़ापन झुंझलाट एकदम गायब हो संगीत सुनवा हमें ए फायदा ले सकू। अपने घरे खुशहाली लियाने री तई दो थी बढ़िया मंत्र हो भजन हो सो जरूर लाने हो। गजल हुई भक्ति संगीत हुआ सुनी रो जीवा खे शांति जरूर मिलो। मारे तन मना दा एक नई ऊर्जा रा संचार हो। संगीत मानसिक सेहत री तई फायदेमंद हो। जिना खे तनाव बहुत ज्यादा हो जाओ तो श्रोताओ संगीत सुनना तिना खे फायदेमंद साबित हो सको। कोय कि एते सुनवा मना खे शांति तो मिलो ही तई स्ट्रेस हुआ जो मारी थकान हुई से भी दूर हो। मेडिकल और क्षेत्र का भी संगीता रही एक खास महत्व हो। एबे हमें सोचू कि संगीता रा भला मेडिकल साथी क्या संबंध, तो बोला जाए सको कि डॉक्टर भी बोलो सो कि संगीत मानसिक सेहत री तई बहुत फायदेमंद हो। तनाव रा जिक्र कर रो हमें इतना फायदा ले सकू। मनारी शांति भी उस ओ जिसे थकान हो से भी हमें संगीत सुनवा अपनी कम कर सकू। संगीत सुनने का मारा जीव बहुत बढ़िया बनांदा रहो जो मारी चित्त सो से शांत हो जाओ। संगीत सुनने का वातावरण दा सकारात्मकता आओ। जीवारी शांति तो इन दिन भरारी जो थकान हो से दूर हो जाओ। अक्सर हमें देखो कि ज्यादातर लोग सुतने का पहले देखो संगीत सुनो। ए टाइम संगीत सुनने रा सभी का बढ़िया हो। जे रोज सुना जाओ इस टाइम तो तनाव आखे बोलो कि हमें काफ़ी हद तई दूर रह सकूँ। एते का अलावा खांदे टाइम चलदे टाइम हमें देखो बोर होने लगे दे तो बढ़िया हो सो कि हमें इस संगीत सुनो। इत का अलावा सफरा रे टाइम दा आसानी साथी टाइम काटुओ। मूड भी फ्रेश रहो। संगीत किशा भी हो से हमेशा सुकून ही दो। संगीत सुन दे देन ए जरूर रखना हो कि जूते तेरी से आवाज़ ओसो से बहुत ज़्यादा तेज नहीं करनी हो क्योंकि इतने सती मारे काना दा भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सको। तो ऐसा कुछ मारे गलबात इत रे बारे दा एवे मारे अपने सुनने आड़े खे एक बढ़िया जा लोकगीत तई सुनाओना। तो ए सुनो तुम्हें एक लोकगीत।

श्रोतायोथी यशोदा देवी आ आस रखू तुम्हें खाई नारा लोक गीत भी जरूर पसंद आया होला। इबे बारियो समर है खबर सारा री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोला कि प्रदेशा दा हिमाचल पथ परिवहन निगमारी बसा आम जनारी तई बढ़िया परिवहन सुविधा प्रदान करने दा सभी खा बढ़िया साधन असो। तिने बोला कि HRTC रे बेड़े दा 297 इलेक्ट्रिक तई 250 डीजल बसा शामिल की जाने लगी दी। उप मुख्यमंत्री बोला कि यो इलेक्ट्रिक बसा यात्री री सुविधा रे मुताबिक बनाई गई असो तई इनारी तई चिन्हित स्थला पांदे चार्जिंग स्टेशन बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नेतृत्व दा पिछले 12 साल दा सबीरा साथ सबका विकास सबीरा विश्वास तई सबीरा प्रयास रे मंत्रा साथी देशे खूब तरक्की की। इस दौरान केंद्र सरकार गरीब किसान महिला युवा तई मध्यम वर्गारे कार्यक्रमारी तई कई खास पहल शुरू की। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभार रणधीर शर्मा बोला कि पंचायती राज संस्था तई शहरी निकाय रे चुनाव परिणाम हिमाचल

हिमाचल प्रदेश हरी राजनीति री दिशा दा दशा तई स्पष्ट करी गई। शिमले आज तिने बोला कि प्रदेश हरी जनते भाजपा रे पक्षा दा अभूतपूर्व जनादेश देवा ए संकेत दिता कि ए सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस रे खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव सो। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव दौरान 9 जून खे माँ यानी मदर्स अगेंस्ट अब्यूज एंड एडिक्शन विषय पांदे महानाटी रा आयोजन किया जाना। ए तेरा मकसद समाजक है नशे रे दुष्प्रभाव रे प्रति जागरूक करने तई महिला व बच्चे री सुरक्षा तई सशक्तिकरण रा संदेश जना जना तई पहुंचाना ओसो। शिमला रे उपायुक्त अनुपम कश्यप बताया कि इस महानाटी रा शिमले रे कई ICDS खंडा खा करीब 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तई सहायिकाएं भाग लौना। तिने बताया कि कार्यक्रम रे माध्यम का सशक्त माँ सुरक्षित बचपन नशा मुक्त समाज तई नेक भविष्य री परिकल्पना के साकार करने रे प्रयास किए जाने। तो यो थे मारे कुछ खबरसार। एवे मारे अपने सुनने वाले खे एक ही विषय पंदे तई गलबात करनी से असो फिट इंडिया अभियान। फिट इंडिया एक मजबूत तई तरक्कीशील भारतारी जरूरत असो। ए भारत सरकारारी एक खास अभियान असो जनीरी मदता खा लोका खा अपने स्वास्थ्य सेथी रे प्रति जागरूक करना सो। भारत सरकार इस अभियान के स्वच्छ भारत अभियान री तर्जा पांदे आगड़े बढ़ावना चाहो यानी इस अभियान के से जन आंदोलन रा रूप देना चाहो। ए अभियान तकरीबन 4 साल चलना। पहले साल दा शरीर री तंदुरुस्ती, दूजे साल दा आदत, तीजे साल दा मारे पर्यावरण रे मुताबिक बढ़िया जीवन शैली, चौथे साल दा रोगा खे दूर करने रे तरीके रे प्रति लोका खे जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 अगस्त 2019 खे राष्ट्रीय खेल दिवस सारे मौके पांदे नई दिल्ली रे इंदिरा गांधी इंडो स्टेडियम दा लाखों आदमी री मौजूदगी दा फिट इंडिया अभियान री शुरुआत की। ए तरह मकसद हर भारतीय री रोजमर्रा रा रहना सहना बढ़िया हो आसान तरीके साथी हो। फिट इंडिया एक पक्का तई तरक्की पसंद भारतारी मांग भी असो कि ए तेरी तई सभी खे मानसिक तई शारीरिक रूपा खा फिट रहने री तई इस अभियान री बहुत जरूरत असो। ए अभियान एक राष्ट्रीय लक्ष्य रे तहत किया जाना। इन दीदा एक कहावत भी असो कि पहला सुख निरोगी काया। ए तेरी तई इस आशय पूरा करने री तई फिट इंडिया अभियान री नींव रखी गई। ए तेरी जरूरत कुए पड़ी ए तेरे बारे दा मारे थोड़ी जी गल बात करनी। कई राष्ट्रीय तई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्टा रे मुताबिक भारता रे मुताबिक जो आंकड़ा पेश किया गया से काफ़ी ठीक ठाक नहीं असो। यानी बोलने रा मतलब असो कि भारत देश आज फिटनेस खा लौआ गंभीर नहीं असो जो कि देशा रे विकासारी तई काफ़ी घातक हो सको। विश्व स्तर पांदे आज स्वास्थ्य रे किनारे खा जागरूकता बड़ी असो। ए तेरी तर्जा पांदे चीना दा स्वस्थ चाइना मिशन 2030 तई चलना। ऑस्ट्रेलिया दा 2030 तई अपने देशा रे 15% नागरिका खे आलस छाड़ने री तई शरीर फिट रखने रा मिशन चलना। जर्मनी भी एक इस अभियान चलाने लगांदा। अमरीका साल 2021 तई अपने शहरा रे लोका खे फिट रखने रे अभियान रे मुहिम चलाने लगांदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रे नेशनल हेल्थ प्रोफाइल डॉक्यूमेंटा रे मुताबिक 1990 खा 2016 बीचे दर्ज संक्रमण आली जो बीमारी बढ़ने री दर 87 खा 55% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन रे मुताबिक भारत दा कुपोषण खा लोआ आंकड़े एबे काफ़ी गंभीर असो। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स

एंड इवेल्युएशनरे मुताबिक हार्टारी बीमारी, टीबी, अस्थमा, मधुमेह तो खतरनाक किडनी री बीमारी री वजह खा सभी खे ज्यादा मौता होने लगी दी। दुनिया रे सभी खा स्वस्थ निरोग देशा री सूचीदा भारतारा प्रदर्शन बहुत दुखदायी असो। नई रिपोर्टा रे मुताबिक पहले नंबरा पंदे तो भारतारा 120 नंबर असो। ए आंकड़ा बताओ कि भारतारे लोग आज अपने सेहत फिटनेस रे किनारे खा कितने पानी दसो। मारे भारत दा सभी तरह री बीमारी री वजह खा जो असो से रोजमर्रा री शैली लोग सेती पांदे दैन ना देवा, व्यायाम न करने री जगह आराम करना पसंद करो, जौनी री वजह खा ए संकट दिना दिना रा बढ़ने लगा दा। इते अभियान रे तहत सेती री तई जागरूकता फैलाई जानी। एबे जे इतरे उद्देश्य रे बारे दा बातचीत करूँ मैं तो इते अभियान रे तहत हर भारतीय री दिनचर्या आसान तरीके साथी बताने की कोशिश करनी, इतरे माध्यमा का शारीरिक तो मानसिक रूपा का स्वस्थ रखने की कोशिश की जानी। इस अभियान का मकसद बच्चे तो युवा के शारीरिक गतिविधि तो खेलारे किनारे प्रोत्साहन, फिट इंडिया अभियान के हर गांव तो पंचायत स्तर पर शुरू हुआ, खंड जिला तो राज्य स्तर पर शुरू किया जाना। इतरी तई फिट इंडिया अभियान का नारा ओसो आ फिट तो इंडिया फिट। ए थी मारे कुछ गलबात फिट इंडिया अभियान रे तहत। आस रखू कि मारे शून्य आले खे बढ़िया लगा ओला। तो एबे जाते जाते मारे अपने शून्य आले खे एक लोकगीत तई सुनावना। तो ए सुनो तुम्हें एक लोकगीत।

श्रोताओं, ए थी मारी आज की पेशकश। आस रखो तुम्हारा सभी खे जरूर पसंद आई होली। इस वायदे साथ ही कि आने वाले शुक्र दिन तई मुलाकात होली, तो तई खे हंसते रहो, नेड़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। दे इजाजत अपने रेडियो दोस्त खेमराज शर्मा के सभी सुनने वाले खे राम राम।

फाइलो रञ्जित बाइसे दाम द्यारोणु शखी कतै माशेन्निक ठुलन्ना बाइसे जिन्दगीओ इराटिङ हजेस लिबतो भाइ दुनिपी तेरेङी मासाङतो जुवातङ्ग्रङ एके आङ्किनोरिङ बाइसे नमस्कार राम राम जुले जु आकाशवाणी शिमला तो जु प्रोग्राम कालपारंग कुल्लू रिले केंद्रनोज रिले हाचो भाईसी गहरीशा किनोनु रेडियो कॉनेज हाजिर तो त्रुकसु किनोरिंग प्रोग्राम निशेष जु आशारंग की किनो से की राजी खुशी नितेज काश्ता दे मात रुकसु प्रोग्रामो जो ओमस्तादो किशा गोपनाशते कलाकार तो श्रीमती मायूम नेगीजी।

नीमो वरदान रंग अजर नीमो यानी तेरिंगी रुजा महाचिर्यो वरदान ली रान रान मदे। भगवान श्री राम जी जू पृथ्वी लोकोज बे रंग हनुमान जी पंग कलयुगो आखिर स्तंग धर्मो दोक रक्षा लान्नो तांगेस आदेश रानशीत मदे। जू हजेरुंग से आ कलयुगो हासली खुश हाचिर्या आने हनुमान जी भगवान तोश मदे। संकट मोचन आने नु दोकुन सच्चा मोनंगीस कशा याद लान्ना तांगमा भक्तोनु संकटु भूत प्रेतोनु बाधानुज हासली वारक्यो शतिशृंगो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रिंगो। दोक भाई से कशाली एके राम राम लोलो रामु नामंग तो हनुमान जी पंग हाने नु हासली खुश लानते मदे। दोक भाई से जुता सांसा दो किशास जाखू हालिंगा मंदिर तोश शिमला सुजंग जाखू जागो जू बारी किनो नु रिंगोंग न्यू पछता दे माँ सांता खबर सारी किनो रंजीज। तुरुकसु खास खास खबर सारोनु राष्ट्रपति आने द्रौपदी मुर्मू जीस तुरो यूंग दिल्ली एकीकृत जू जनजातीय विकास एजेंसियों रंग एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनानु तकड़ा लन्नो तांगेस राष्ट्रीय सम्मेलनु उद्घाटन लाइशेद। जू मौको देन राष्ट्रपति जीस लोशीद भाई की देशो चैपंग तोशीदिया जनजातीय समाजू संस्कृति वाली तकड़ा दोरिंगो। जुगोनु आगे बढ़ने कोशिश किसानु लानिक्स्या आने लोशित की देशो सही हुन देशानु रंग मीनू विकास सही पंग हाचित क्या मिक्रिंगो। आई खबर तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी लोशित की प्रदेशो हिमाचल पथ परिवहन निगमु बसोनु मीनू दाम सुविधानु रानो खास साधन तोरिंगो। आने लोशित मदे की जो HRTC दा निश्राव पनिजो दोक स्वस्तिश इलेक्ट्रिक रंग निश्राव निश्निजो से दोक डीजलू बसो तो रिंगो मदे। दंग सिवाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीव नेतृत्व मदे हलिंगा स्वनिश बसुओनु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास रंग सबका प्रयास मंत्रो रंग एके देशो वाली प्रगति हाचिस रिंगो। जू दौरान केंद्र सरकार इस किसानों नु मनरिंग जोनु युवाओं नु रंग माजंग वर्गु बुलायु तांगे स्वाल कमु लाइशित रिंगो। दंगसी भाई से आई खबर तो अंतर्राष्ट्रीय दो कशानु हालिंगा शिमला ग्रीष्म उत्सव बेरंग गुई जून म्या मा यानी मदर्स अगेंस्ट तो अब्यूज एंड अडिक्शन विषयो देन महानाट्यू आयोजन लानतो रियो। जुसु मकसद ख्यांता समाजो नशाओ पंग मारी प्रभावों को चंग जागरूक लानो रंग मनरिंगजो रंग छांगोनु सुरक्षा रंग सशक्तिकरणु संदेश जन जन स्तंग पन्नो तांगेस तो मदे। दवाई से जुता तो की तरुक्सु खास खास खबर सार काचता दे मा किशा गिथंग रंचे श्रीमती गुलवंशी नेगीजी स्लाइशेद।

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सीताराम पथिक की आवाज़ में ये महास्वी लोकगीत।

सीताराम पथिक की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आइए अब सुनते हैं उदयराम व साथियों की आवाज़ में ये सिरमौरी लोकगीत।

उदयराम व साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में

0: आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगी। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के तीन जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दे दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है।
1: देश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हुए और इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यासित किया। जिला परिषद के 250 वार्डों में से 144 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के घोषित समर्थित उम्मीदवार जीते। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा मात्र 60 तक सीमित है।
0: प्रदेश के चार नगर निगमों में हाल ही में हुए चुनाव के बाद राज्य सरकार द्वारा महापौर पद के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। सोलम, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगम के महापौर के पद 5 वर्ष की अवधि के लिए अनारक्षित रहेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाहन शहर में लंबे समय से पानी का बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जल शक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता रोशन शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 120 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बार बार नोटिस के बावजूद अपने बिलों की अदायगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता एक सप्ताह के भीतर अपने पानी के बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो बिना नोटिस उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
2: में हमने कम से कम उनको लोक अदालत से भी ये तीन तीन बार नोटिस भी चले गए, खुद मेरे द्वारा भी उनको नोटिस चले गए। विद इन 7 डेज में अगर वो नहीं देते तो उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा, ना उनको कोई नोटिस मिलेगा। हम उनको बार बार फोन भी कर रहे हैं, कम से कम 120% ऐसे जो टाइम से अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं, अमाउंट 10,000 से भी ज्यादा, तो अब उनको ना कोई दी जाएगी, सिर्फ कनेक्शन कटेगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 1 जून से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल

0: पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसी कड़ी में बिलासपुर में उपायुक्त राहुल कुमार ने आज इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने जिलावासियों से स्वगणना सुविधा का लाभ उठाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का आग्रह किया। उधर ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने भी जिले के सभी नागरिकों से जनगणना 2027 के प्रथम चरण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना किसी भी राज्य और देश के समग्र व संतुलित विकास की आधारशिला होती है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार व विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्र और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अब आप सुनेंगे बिलासपुरी कार्यक्रम।

बिलासपुरी कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सारे साथियों जो तुम्हारी रेडियो दोस्त सुनीता परमार री प्यार भरी नमस्कार। साथियों 6:06 हो चुकी रे ता हुण सुना तुहें अपना बिलासपुरी कार्यक्रम। अजकने कार्यक्रम री रूपरेखा जी तां से इयां ही कि समाजा च बदलावा खातर आहरे युवा बच्चियां रा योगदान कितना जरूरी है, इस बारे चाहें कुछ गल करनी और दूजी गल करनी सफाई रे महत्वारी। बाकी तुहां जो पता ही आ कि कुछ खबरां भी सुनानियां और कुछ लोक गीत भी सुनाने, तां आवा पहले सुन लो ए प्यारा जिहा अश्विनी ठाकुर होरी री आवाज़ च लोक गीत।

सहयोग देवई तो किसी भी तरह की समस्या तिना अगे टिकी नहीं सकती। युवा शक्ति अपने सहयोगों ने राष्ट्र जो पूरे विश्व च एक बड़ी शक्तियारा रूप जैसे दे सकें। विकास रे सारे क्षेत्र च नवयुवकों का खास योगदान रवा। इंसान ने कई तरह रे अनुसंधान रे द्वारा जीवना जो सरल और सुखी बनाई रहा, पर दुख इस गल रहा कि फिर भी समाज च कई तरह रे अंधविश्वास बने रहे और आज भी लोग पुराने रीति रिवाज और रूढ़ीवादा रा पालन करे दे। आज भी देश च छुआछूत जाति पाति रंग भेद ये कुरीतियाँ जी से अली भी फैली रही। जे समाज इन रूढ़ीवादी परंपरा और अंधविश्वासों जो छड़ी देंगा तो सह एक मजबूत राष्ट्र बनना। जितना कठिन काम जे युवकों द्वारा कित्या जाना उतना कोई और नहीं कर सकता। युवा शक्ति रा आर्थिक क्षेत्र च भी खास योगदान रह रहा। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था दृढ़ और कमजोर होने रा श्रेय भी युवा शक्तियाँ जो ही जावा। जे देखा जाए तो भारत रे कई गाँव रा क्षेत्र आज भी पिछड़ी रही है, क्योंकि अन्न उगाने वाला किसान गरीबी अवस्था च ही रवा। देशारी पूंजी कुछ सीमित लोगों रे हथा ची इस बिगड़ी री व्यवस्था जो मिटाने खातर युवा शक्ति चेतना लियाई सकें। गाँव रे लोगों जो सफाई व्यवस्था जो ठीक करने, कृषि तकनीक समझने, अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो दूर करने रा प्रयास जैसे कित्या जाए सका। इस खातर युवा वर्गे कम भी बहुत कीते रहे, पर फिर भी बहुत कम बाकी भी है। युवा शक्ति जो चाहिए कि सह इस पुनीत कम्मा च खास बड़ी चढ़ी ने योगदान देवे। राष्ट्र रे सारे विकास कार्य री सफलता जी सह युवा शक्तियाँ पर ही निर्भरी। नवयुवकों जो विचार करना चाहिए कि ये जीवन सिर्फ तिना खातर ही नहीं आ, बल्कि समाज और राष्ट्र खातर भी आ। राष्ट्र की सच्ची शक्ति नवयुवकी है। युवा शक्ति जे इसे नए कम्मा जो करने और समाज जो सुदृढ़ बनाने की क्षमता रखें। युवा शक्ति समाज और राष्ट्र जो नवा रूप देने च समर्थ ही। युवा बच्चे ही सपने जो साकार कर सकें और युवा ही देश रे मुखिया आधार है। जे देश रा युवा वर्ग सारी चुनौतियां रा डटी ने सामना करने जो तैयार हो जाए, कमर कसी ने देश च छुपे रहे भ्रष्ट लोगों जो सबक सिखाए तो राष्ट्र विकास रे पासे अगर हो सका। देश रा युवा वर्ग ही देश री अमूल्य निधि। युवकों च अपार शक्तियां रा भंडार आ। समाज च एक एड़ी व्यवस्था होनी चाहिए तिस्ते जे युवा शक्तियां जो नवनिर्माण और विकास रे कम्मा च हिस्सा लेने खातर ज्यादा ते ज्यादा मौके मिली सके और ये कम युवकों रे योगदान रे बिना असंभव आ। तो जी अं गल की समाज च बदलाव खातर युवाओं का जो योगदान असें कितना होना चाहिए तो हम सुन लो एक और लोकगीत।

तां जे लोक गीत गाया करदी थी बबली होरी। हुण असें गल करनी सफाई रे महत्व रे। सफाई इंसाना रे जीवना रा इक बहुत जरूरी हिस्सा। स्वच्छता सिर्फ आहरे शरीर या घरा तक ही सीमित नहीं होंदी, बल्कि ये आहरे समाज, पर्यावरण और पूरे देशा री प्रगति ने जुड़ी रही हुई। स्वच्छता ही सेवा ही, जिथी सफाई हुई उथी स्वास्थ्य, सुख और शांति रा निवास हुआ। गंदगी कई तरह री बीमारियां जो जन्म दे हुई, जबकि सफाई स्वस्थ जीवना रा आधार बनाई। इस खातर हर आदमी रा कर्तव्य कि से अपू भी साफ रहे और अपने आस पास रे वातावरण जो भी साफ रखे। सफाई रा मतलब आ अपने शरीर, कपड़े, घर, स्कूल, सड़क, मुहल्ला और आस पास रे वातावरण जो साफ और ठीक रखना। ये सिर्फ बाहरी सफाई तक ही सीमित नहीं आ, बल्कि मन और विचारा री स्वच्छता भी उतनी जरूरी। एक साफ आदमी रा जीवन अनुशासित और सुखदवा। माणुए रे जीवना च सफाई रा बहुत बड़ा महत्व आ। जे आहें हर रोज़

स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए और हत्थां पैरां जो साफ रखिए तां अहें कई बीमारियां ते बची सकें। गंदे हत्थां ने खाना खाने पर पेटा री बीमारियां फैलाईयां और इसी तरह दंदा री सफाई ना करने पर दंद खराब हुई जावें। साफ सुथरा रहने वाला आदमी हमेशा आत्मविश्वासा ने भरिया रवां, बाकी लोग भी तिसने रहना पसंद नहीं करते। इस करने हर आदमी जो अपनी व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर च सफाई रखने ते वातावरण सुखी और स्वस्थ बने रहूँ। जे घर च कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाए तो मक्खियां और मच्छर पैदा होने लगे और इससे डेंगू, मलेरिया, हैजा ये बीमारियां फैलने का खतरा बने रहूँ। इस खातर घर की सफाई भी बहुत जरूरी। साफ सुथरे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे स्वस्थ रवें और पढ़ाई अच्छा मन लगावें। जे स्कूल गंदा हो तो बच्चों का मन ध्यान भटकदा रवां और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जावां। इस खातर सफाई सिर्फ आदमी या घर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण जो साफ रखना बहुत जरूरी है। जे सड़कां, पार्क और सार्वजनिक स्थान साफ हो तो लोगों जो अच्छा वातावरण मिला, स्वच्छ वातावरण ते प्रदूषण घटूँ और प्रकृति भी बांकी सुजाई। आज प्लास्टिक और कूड़े कचरे के कारण पर्यावरण जो काफ़ी नुकसान होया दा, नदियाँ और तालाब प्रदूषित होया दे। इसते पानी च रहने वाले जीव और मानव जीवन दोनों पर बुरा असर पया दा। इस खातर आहां जो कूड़ा उरे परे सटने की बजाय कूड़ेदान रा इस्तेमाल करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य और सफाई रा गहरा संबंध है। जिथे सफाई हुई उत्थे बीमारियां घट हुई। डॉक्टर भी लोगों जो साफ सुथरा रहने की सलाह देवें, बार बार हाथ धोना, साफ पानी पीना और अच्छा खाना खाना अच्छे स्वास्थ्य खातर जरूरी है। कोरोना महामारी के वक्त पूरे विश्व सफाई और स्वच्छता का महत्व समझिया। लोगों जो बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने और आसे पासे की सफाई रखने की सलाह दी गई। इससे यह स्पष्ट हुई है कि सफाई आहरे जीवन की रक्षा कराई। भारत सरकार विदेशा जो साफ बनाने खातर स्वच्छ भारत अभियान शुरू कित्या। इसरा उद्देश्य लोगों जो सफाई प्रति जागरूक करना। गांव और शहरों शौचालय बनाए गए और लोगों जो खुले च शौच ना करने खातर जागरूक कित्या गया। जे हर आदमी अपने आसे पासे सफाई रखे तो आहरा देश सुंदर और स्वस्थ बनी सका। तो जी ये गल तो है कि सफाई बारे च हुण सुनना कुछ खास खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरी आज नवी दिल्ली च जनजातीय विकास एजेंसियां और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जो मजबूत करने खातर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कित्या। इस मौके पर राष्ट्रपति होरी बोलिया कि देशा रे हर गांव और हर आदमी तक विकास पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू होरी सभी एजेंसियां और हितधारकां ते जनजातीय कल्याण खातर हर पक्ष पर ध्यान देने जो बोलिया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया होरी युवाओं ने साइकिल चलाने और एक स्वस्थ और हरित राष्ट्र रे निर्माण च अग्रणी भूमिका निभाने रा आग्रह कित्या। विश्व साइकिल दिवस रे मौके पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए तिने बोलिया कि साइकिला जो नियमित आदत बनाने ते संतुलित और अनुशासित जीवन शैली जो बढ़ावा मिला और सौगी पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ परिवहन जो भी समर्थन मिला। तिने बोलिया कि साइकिल चलाना ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो बनाए रखने च सहायक आ बल्कि एक स्वस्थ और हरित राष्ट्र रे निर्माण च भी योगदान देवां।
उप

मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होरी बोलिया कि प्रदेशा च हिमाचल पथ परिवहन निगमारी बसा आम जना जो परिवहन सुविधा प्रदान करने रा सर्वश्रेष्ठ साधन आ। तिने बोलिया कि HRTC च 297 इलैक्ट्रिक होर 250 डीजल बसा शामिल कीती जाए दियां। उप मुख्यमंत्री होरी बोलिया कि ये इलैक्ट्रिक बसा यात्रियों की सुविधा के अनुसार बनवाई गई रही और इन खातर चिन्हित जगह भी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाए थे। अगली खबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी के नेतृत्व च पिछले 12 साल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास रे मंत्र सौगी देश बहुत ज़्यादा प्रगति की। इस दौरान केंद्र सरकारें गरीबा किसाना औरतों युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण खातर कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की। तो ये थी जी कुछ खास खास खबर, हूँ सुन लो है और लोकगीत।

तां जी बसंत लाल ठाकुर होर रे इस लोकगीता कन्नै हरे बिलासपुरी कार्यक्रम आरा वक्त जैसे खत्म होया था। अपनी रेडियो दोस्त सुनीता परमार जो देवा इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड 104.7 मेगाहर्ट्ज़ रही मारो जो आकाशवाणी शिमला सन के 100 बजे 36 मिनट होने वाले हैं। सुना तो मैं आप लोग कुलवी कार्यक्रम।

तेरा जी ज्योति शोभली लोक स्तुति पेश कर रहे मारे कलाकार थे रामलाल भारती जी। तारे लोकगीते माध्यम के जो गलत सुने हो कि भाई आज के वक्त दे भी मारे इलाके लोग खासतौर कर कुल्लू जिले लोग से सिंचाई ये जो संसाधन जने मारे कूले से योग के रूपयो काम हुआ और हर वर्ष बरसात आ और बरसाती दौरा दीजिए कूले छूटा बीमारी ये रख रखावे खातिर हमा जितने मारे किसान साथिया तीना हमेशा सजग रहने को सतर्क रहने को तेबे से वर्षे पूरी वर्षी ले अपने खेचा का अनाज पैदा कर सका। जब पानी सुविधा न रहा तो तथा के बड़ी भारी समस्या पैदा हुआ जीव के जीव बजा के हमें सब लोग डिप्पू गई या दुकानें राशना गई निर्भर रही। ता किसाना आत्मनिर्भर बनाने थे मारे कलाकार भी ये शुभले लोकगीते माध्यम के आम जनमानस जागरूक कोनो ला दो कि भाई कुल अगर छोटी दिया तो जो जोड़नी भी जरूरी है। तेरा कार्यक्रम मारे गलबात तो सिलसिला लगातार जारी रहना।

तेरा जी जाति शुभली लोकसुति पेशकर नेड़े मारे कलाकार थी उषा शर्मा जरूर थारे मजो लो शुभली लोकसुति हो कोई कांडे रजंडा नाग नाग देव स्तुति थारे सुनी ताज के कार्यक्रम धामा कुछ नवी ताजी भी आई दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी बोलो कि आजकल के जने राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र दी सभी का अच्छा प्राथमिकता प्रदान कर दी लागे दिया और कई एंडे महत्वपूर्ण सुधार लागू किए दिया जिवे सकारात्मक परिणाम सामने आने लग दिया। शिमला आज एक समीक्षा बैठक के दौरान इति अध्यक्षता कर दी विरती ने बोलो कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री द्वारा पूरी किए दिया ये थे जने विद्यार्थिया इन्हें अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करनी यह पहले तहत विद्यार्थी वर्ग ले अलग अलग उद्योगे ससती काम करने तिनले मौको मिलन और इनले स्टाइपेंड भी इनले स्कॉलरशिप भी योजना प्रदान इनले मिलनी। शिक्षा मंत्री जी बोलो कि महाविद्यालय स्तर गई विदेशी भाषो पाठ्यक्रम शुरू करने ये भी सरकार इत बारे भी सरकार विचार कर दे लागे दिया। अगले हमें खबर आए थे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय दे न्यायाधीश जने हमारे इन्हें नियुक्तियों प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में ले मंजूरी ले भेज दो। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी नेतृत्व दे सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में प्रदेश हिमाचल प्रदेश का 4 जिला न्यायिक जो जिला स्तर गई जज थे अधिकारी थे चिराग भानु सिंह भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल जी जे वे हाई कोर्टे जज नियुक्त होने इतने प्रस्ताव बारे दें स्वीकृति खातिर इन्हें नाव कॉलेज में भेज दिया। राष्ट्रपति मंजूरी मिलने बाद अधिसूचना जारी होने बाद ही इन्हें नियुक्ति प्रभावी होनी। प्रदेश जने चार नगर निगम ये भी चुनाव हुए पासले दिहाड़े दी चुनाव बाद राज्य सरकार महापौर पदे पद गई जने आरक्षण रोस्टर जारी किए दो। सोलन पालमपुर मंडी और धर्मशाला नगर निगम जने महापौर रोने इस जने पदा 5 वर्षीय अवधि तई अनारक्षित जे रोने इत जो महापौर पदा इत बाद अधिसूचना जारी होगी। नाहन शहर के लंबे वक्त और पानी बिल ना देने वाले उपभोक्ते खिलाफ जल शक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने वाले विभाग के सहायक अभियंता रोशन शर्मा जी बोलो कि शहर के करीब 120 अने उपभोक्ता द्वारा बार बार तिन्हें नोटिस देने बाद भी तिन्हें बिले अदायगी न किए थी। तिन्हें बोलो कि जय उपभोक्ता एक ही हफ्ते भीतर अगर जय पानी बिलो भुगतान न करा तो बिना नोटिस तिन्हें पानी कनेक्शन से काटने। प्रदेश की जनगणना 2027 प्रथम चरण तहत स्वगणना अभियान चलाऊ दुआ और जो अभियान 1 जून का 15 जून तय प्रदेश की संचालित रहो इत माध्यम के नागरिक डिजिटल पोर्टल गई भी स्वयं अपने जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सका। तेरा जे तुम्हारे आज की जरूरी समाचार और गलबात तो कार्यक्रम दी मारे गल करने की आज के वक्त दी जन हमारे देश की एक कल्याणकारी सरकार बने दिया और कल्याणकारी सरकार और मुख्य मकसद जन रो कि सरकार आम जन मान से खातिर आम जन मान से कल्याण करने खातिर नई नई योजना आना एनी योजना आज के वक्त दी मारे देश चल दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तेरा हर घर दी बेटी हो तो बेटी हम पढ़ाने भी और बेटी हम बचाने भी तो जन पुराने वक्त दी छोटू खातिर लोग भ्रूण हत्या वगैरह कर रहे थे ये तक ये तक अंकुश भी लागो दो ताज के वक्त दे हमारी बेटी जितनी भी आ से अच्छे से पदा गई आसीना जज बनी दिया डॉक्टर।

वकीला आईएएस और जड़ा कि भाई हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारी है पुलिस सर्विस से हो अतिथ बड़े बड़े ऊंचे औहदे गई मारी बेटली बेची दिया थामा गौरा कही जो शुरुआत करनी चाहिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान बारे दी और सरकार भी इतने पूरी पूरी मदद करने लाए दिया। तो मेरे तुम सभी लोगों का जन भी कोशिश गुजारिश रहनी कि आज को दिहाड़ो मारो बुधवार हो तो ये दिहाड़े दी तुम्हें चिट्ठी पत्री माध्यम के भी तुम्हें हमें चिट्ठी पत्री लिया तो इतने जवाब भी हमें आज के दिहाड़े दी दे सकी पर जब तुम्हें हमें चिट्ठी पत्री लिए तुम हमारे कार्यक्रम कहना लगे थे बारे तुम हम जरूर चिट्ठी पत्री माध्यम के संपर्क करना चाहिए तेब ही हमें थारे चिट्ठी पत्री एव कार्यक्रम में शामिल कर सकी। तेरा कार्यक्रम दी सुन हमारे एक होर शोभला जो लोकगीत यू पेश करने वाले मारे कलाकार यशवंत सिंह आज़ाद।

0: 2014. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। सुनते हैं कृषक और बागवान श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि जगत कार्यक्म में मैं हूं हेमराज शर्मा
2: और मैं हूं हरी सिंह चंदेल।
1: हरी जी, क्या हालचाल है आपके?
2: हेमराज जी, मैं तो ठीक हूं और उम्मीद करते कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन है वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे।
1: बिल्कुल
2: हेमराज जी, जैसे कि जून का महीना चला हुआ है तो ये समय जो है कृषि और बागवानी के लिए बहुत ही व्यस्त और महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल जी,
2: क्योंकि इस दौरान किसान भाई रबी फसलों की कटाई पूरी करके खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं और बागों में भी फलों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल जी, जून के महीने में किए जाने वाले मुख्य कृषि कार्यों की अगर बात करें, आजकल एक तो देखिए अब समय आ गया है कि धान की बुआई भी हमारे किसान भाई करेंगे और यदि किसान भाइयों ने मई के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी नहीं डाली है तो जून के पहले पखवाड़े में इसे पूरा अवश्य कर ले। सुगंधित धान की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में भी डाली जा सकती है। और मक्का की बात करें तो मक्का की बुआई के लिए ये बेहतरीन समय है
2: जी,
1: और सिंचित क्षेत्रों में 15 जून तक और सामान्य परिस्थिति में 25 जून तक बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दलहन और तिलहन की बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में अरहर की बुआई जून के पहले सप्ताह में करें, सोयाबीन की बुआई जून के अंतिम सप्ताह में और उसके बाद अगर रह जाए तो जुलाई के पहले सप्ताह में भी की जा सकती है
2: जी। और बात कर लेते हैं सब्जियों की, तो जून में टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन और अगेती फूलगोभी की खेती भी की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
2: और बात करें बागवानी की तो पर्वतीय क्षेत्रों में जून के दौरान सेब और नाशपाती के पेड़ों पर अतिरिक्त फलों को हटाने का कार्य भी हमारे बागवान भाई कर रहे होंगे ताकि जो बचे हुए फल हैं उनका आकार जो है अच्छा हो सके।
1: बिल्कुल। दूसरी एक बात ये भी है हरी जी की, देखिए मानसून शुरू होने से पहले अगर सही समय पर सही सब्जियों की खेती कर ली जाए तो कम समय में शानदार उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है और वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं
2: जी। और किसान भाइयों, गर्मियों में सूखे की स्थिति से बचने के लिए और नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में गोबर की खाद डालें और पौधों के तनों पर जो है बोड़ो पेस्ट का लेप जो है अवश्य लगाएं।
1: बिल्कुल हरी जी, देखिए ये तो बात होगी कि आजकल जो समसामायिक जो कार्य है वो हमारे किसान भाइयों ने कौन कौन से करने हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ है इसके बारे में अगर बात करें तो काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे पशुओं की देखभाल हमारे किसान भाइयों ने किस प्रकार से करनी है, उसके बाद पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का और जानकारीपूर्ण बातचीत के तहत आज किसान भाइयों को जिस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी वह है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। डॉक्टर महेंद्र सिंह भवानी से बातचीत करेंगे राजेंद्र, तो किसान भाई सुनेंगे इसका पुनः प्रसारण। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं काम की बातों के अंतर्गत पशुओं की देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें इसके बारे में।
2: किसान भाइयों, पशुओं के रखरखाव से हमारा अभिप्राय पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, चिकित्सा का प्रबंधन और प्रजनन का प्रबंधन करने के उचित कदम उठाने से है। पशुपालन का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि यह ग्रामीण समुदाय के 2/3 लोगों को आजीविका जो है प्रदान करता है। किसान भाइयों, पशु प्रबंधन पशु की देखभाल, कल्याण और सही तरह से पालन करने पर केंद्रित होता है।
1: बिल्कुल हरी जी, और देखिए पशु प्रबंधन के क्या मुख्य घटक है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है आहार का प्रबंधन करना और उसके बाद आवास का प्रबंधन करना, स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रबंधन करना और प्रजनन का प्रबंधन करना। बात करें अगर आहार के प्रबंधन की तो आहार के प्रबंधन की पशुओं के स्वास्थ्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके लिए संतुलित आहार देना उन्हें बहुत ही जरूरी होता है। जिस आहार में पशु के स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात तथा मात्रा में उपलब्ध हो उसे

0: संतुलित आहार कहते हैं।
1: पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार का 2/3 भाग मोटे चारे से और 1/3 भाग दाने के मिश्रण से मिलना चाहिए। मोटे तौर पर वयस्क दुधारू पशु के आहार को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि जीवन निर्वाह के लिए आहार, उत्पादन के लिए आहार और गर्भावस्था के लिए आहार।
2: किसान भाई, अब बात करें कि जीवित निर्वाह के लिए पशु को कितना आहार देना चाहिए, तो आहार की वह मात्रा जिसे पशु को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसे पशु अपने शरीर के तापमान को उचित सीमा में बनाए रखने, शरीर की आवश्यक क्रियाओं जैसे पाचन क्रिया, रक्त परिवहन, श्वसन आदि के लिए काम में लाता है।
0: बिल्कुल,
2: इससे उसका वजन भी एक सीमा में स्थिर रहता है, चाहे पशु उत्पादन में हो या ना हो, इस आहार को उसे देना ही पड़ता है। इसके अभाव में पशु कमजोर होने लगता है।
1: पशुपालक स्वयं भी कुछ घटकों को अनुपात में मिलाकर संतोषजनक पशु दाना बना सकते हैं। जैसे खलों की बात करें तो उसमें मूंगफली, सरसों, तिल, बिनोला और अलसी 25-35% इसकी मात्रा रहेगी। मोटे अनाज में गेहूं, जौ, मक्की, ज्वार 25-35% तक इसकी मात्रा रहेगी। और इसके अलावा खनिज मिश्रण 2% और आयोडीन युक्त नमक 1%, विटामिन्स ए डी 3 का मिश्रण 20-30 ग्राम प्रति 100 किलो रहेगा। उत्पादन के लिए आहार की बात करें तो देखिए, उत्पादन आहार पशु आहार की वह मात्रा है जिसे पशु को जीवन निर्वाह करने के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन के लिए भी दिया जाता है। 1 किलो दाना जो है वो स्थानीय गाय के लिए प्रति 2.5 किलो दूध उत्पादन के लिए देना जरूरी होता है। और संकर नस्ल की गाय या भैंस की बात करें तो प्रति 2 किलो दूध उत्पादन के लिए 1 किलो दाना उसे देना चाहिए। हर 10 किलो अच्छे चारे से 1 किलो दाने को कम किया जा सकता है। इससे पशु आहार की कीमत कम हो जाएगी और उत्पादन भी ठीक बना रहेगा।
2: किसान भाइयों, पशु को दुग्ध उत्पादन और जीवन निर्वाह के लिए साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जो है जरूर पिलाना चाहिए। अब बात करें गर्भावस्था के लिए आहार की, तो पशु की गर्भावस्था में उसे 5वें महीने से अतिरिक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि इस अवधि के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। सही दुग्ध उत्पादन के लिए गाय को जो आहार देना जरूरी है उसकी बात कर लेते हैं, तो गाय को अतिरिक्त दाने की मात्रा जो रहेगी वो रहेगी 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाने की, और यदि गाय संकर है या भैंस है तो उसकी मात्रा रहेगी 2 किलो के आसपास। अधिक दूध देने वाले पशुओं को गर्भावस्था के 8वें माह से दुग्ध ग्रंथियों के पूर्ण विकास के लिए अतिरिक्त दाने की जो आवश्यकता रहेगी वो रहेगी 3 किलो, और गाय अगर संकर है या भैंस है तो उसके लिए दाने की अतिरिक्त मात्रा रहेगी 4-5 किलोग्राम।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं आवास प्रबंधन की। तो देखिए, गौशाला का स्थान समतल तथा बाकी जगह से कुछ ऊंचा होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वर्षा का पानी, मलमूत्र तथा पानी जो है वो आसानी से बाहर निकल सके। और इसके अलावा गौशाला के स्थान पर सूर्य का प्रकाश होना भी बहुत जरूरी होता है। धूप जो है वो कम से कम 3 तरफ से लगनी चाहिए। पशु आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम एवं चौड़ाई उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। इससे पशुओं को सूर्य का प्रकाश और हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। गौशाला का स्थान पशुपालक के घर के नजदीक ही होना चाहिए। पशुशाला में पशुओं को पर्याप्त स्थान हो, ताकि वो पूर्ण रूप से आराम और सुरक्षा के साथ बैठने तथा घूमने के लिए भी थोड़ी जगह उन्हें मिलनी जरूरी होती है। पशु आवास में बीमार पशुओं की देखभाल के लिए अलग से कक्ष होना चाहिए, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में न फैले। पशु आवास में नियमित सफाई होनी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए लाल दवाई या फिनाइल से उसे साफ करना चाहिए। चूने का छिड़काव भी कर सकते हैं। और चिकित्सा प्रबंधन की बात करें तो गाय या भैंस के बयाने अर्थात बछड़ी बछड़ा पैदा होने के बाद बच्चे के नाक व मुंह से श्लेष्मा व झिल्ली को साफ कर देना चाहिए, ताकि उसकी सांस लेने की क्रिया में कोई रुकावट पैदा ना हो। इसके अतिरिक्त माँ को उसे चाटने देना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर में रक्त का संचार जो है वो सुचारू रूप से हो सके। बच्चे की नाभि को ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर साफ कैंची से काट देना चाहिए तथा उस पर टिंचराडेन लगानी चाहिए।
2: जी, और जन्म के 2 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला दूध अवश्य पिलाना चाहिए। खीस जो है एक प्रकार का गाढ़ा दूध होता है, जिसमें साधारण दूध की अपेक्षा विटामिन्स, खनिज तथा प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। इसमें रोग निरोधक पदार्थ जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा उसका सर्दी और गर्मी से भी पूरा बचाव रखना आवश्यक होता है।
1: बिल्कुल हरि जी, तो देखिए, ये तो बात हो गई कि पशुओं की देखभाल हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से करनी है इस विषय के बारे में।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और किसान भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं एक लोकगीत से। तो आइए किसान भाइयों के साथ समूह स्वरों में हम भी सुनते हैं ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। तो हेमराज जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण। विषय है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर मोहेंद्र सिंह भवानी और उनसे बातचीत करेंगे राजेंद्र।
1: किसान भाइयों नमस्कार, आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर मोहेंद्र सिंह भवानी जी आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसके बारे में कुछ बताएं।
2: जैसे आप शायद मालूम होगा कि प्राकृतिक खेती जो है एक नया विषय है हिमाचल प्रदेश में जो शुरू हुआ है। इसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमें घर के ही उत्पादों से, घर की चीज़ों से ही हमें जो है कृषि करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने टाइम से हमारी रासायनिक कृषि चल रही है, तो इसके काफ़ी दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आ रहे हैं और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उद्देश्य रहा है कि हम जो है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नेचुरल तरीके से और घर के संसाधनों से जो है हम प्राकृतिक कृषि करें। प्राकृतिक कृषि में बेसिकली ये है कि हम इसमें गाय आधारित जो है सारे उत्पाद बनाते हैं। गाय का जैसे गोबर है, गाय का गौमूत्र है और जो हमारे वहाँ के आसपास की जो जंगली जड़ी बूटियां हैं उसके आधार पे ही जो है हम ये प्राकृतिक कृषि करते हैं। इसमें कोई भी बाहर का रसायन, बाहर का कोई खाद या दवाई, कोई भी चीज हम इसमें नहीं डालते हैं, ताकि किसानों को जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाजार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसलिए जो है ये प्राकृतिक कृषि जो है ये हमारी शुरू हुई है।
1: प्रश्न हमारा ये उठता है कि प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन क्या है।
2: जी, इसमें जैसे अब आप जानते हैं कि खेती बाड़ी के लिए जो है हमारे को सबसे पहले कि जो हमारी जमीन जो है उर्वरकता होनी चाहिए। उर्वरकता जो है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो जमीन में होने चाहिए, इसमें मुख्य तौर से अगर मैं बताऊं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके मेन कंपोनेंट्स है। इसके बाद फिर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है और साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक है, मोलिब्डेनम है, सेलेनियम है या मैगनीज है। इस तरह के जो है हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे मिट्टी में होनी चाहिए। तो सबसे इसमें जो मेन चीज़ है उर्वरकता में वो आता है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हम सब जानते हैं कि ये हमारे अवशेषों से ही निकलता है, जैसे हमारे फसलों के अवशेष है या दूसरे जो भी हमारे बाहर की जड़ी बूटियां हैं। तो इसके आधार पे क्या है कि हमारा जो है ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस काम के लिए अदरवाइज़ क्या है कि जो जैसे हमारी जैविक कृषि भी है उसमें गोबर का इस्तेमाल होता है जो कि टनों के हिसाब से होता है, परंतु प्राकृतिक खेती में इससे थोड़ा भिन्न है। इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें अपने घर में ही जो है सारी चीज़ें तैयार करते हैं। गाय के जो गोबर है और उसके जो गौमूत्र है के अवशेषों के बेस पे हम ये तैयार करते हैं। तो इसमें जो मुख्य तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो है एक जैसे जीवामृत, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवामृत जो है जैसे गाय का गोबर हम लेते हैं, इसमें गाय के गोबर के साथ गौमूत्र लेते हैं, गौमूत्र थोड़ा इसमें हम जो है गुड़ डालते हैं और दाल का आटा डालते हैं जैसे बेसन और कुछ जंगल की मिट्टी डालते हैं जहाँ पे हमारा कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ ना हुआ हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उर्वरक हम बोल सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में। इसको हम जो है ज़मीन पर भी डालते हैं और पौधों में भी सीधे हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं ताकि हमारा उर्वरक जो है इसमें काफ़ी मात्रा में पौधों को मिल सके। इसके अलावा दूसरा हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक जो है वो है घनजीवामृत। तो घनजीवामृत जो है हमारा

0: इस गोबर से, ताज़े गोबर से बनता है। ताज़े गोबर के को जो है हम थोड़ा इकट्ठा करके, साफ़ करके, जो उसमें खरपतवार या घास वगैरह है इसको निकाल के इसको हम एक साफ़ जगह में बिछा देते हैं। और इसके बाद इसमें जैसे आपका गौमूत्र डाल देते हैं और गुड़े और बेसन इसको मिक्स करके फिर इसको हम अच्छे से मिला के फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो है इसको हम अपने 4-5 दिन के बाद जो है ये जैसे थोड़ा सा सूख जाता है पलटने के बाद, इसको फिर हम इकट्ठे करके किसी बोरी वगैरह में अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो हमारा घनजीवामृत बनता है इसको जो है हम कम से कम 6 महीने साल तक भी वन रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। फसल की बुआई से पहले जो है हम इसमें फसलों में जो है घनजीवामृत डलवाते हैं, और इसके बाद जो है फिर जैसे फसल हमारी बढ़ती जाती है तो इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऊपर से टॉप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। और साथ में जैसे फलदार पौधे हैं, फलदार पौधों में भी जैसे रासायनिक खादें पड़ती हैं उसी तरह से हम जो है इसको खादे को ना डाल के जो है हम इसमें घनजीवामृत डालते हैं। तौलियों में सेबों के लिए है या दूसरे हमारे आड़ू है, बादाम है, कोई भी फल फ्रूट है तो इसमें जो है हम ये डालते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला घटक आता है वो है हमारा मल्चिंग, जिसको हम आच्छादन भी बोलते हैं। तो आच्छादन में क्या होता है कि हम जो हमारी धरती की जो सतह होती है, जैसे सपोज करो पौधे हैं, हमारे पौधों का जो तौलिया होता है, तौलिए के ऊपर जो है हम एक लेयर बना देते हैं, जिसको कि जो घास फूस या जो आसपास के हमारे जो वेस्ट बचता है या जैसे गाय के नीचे की घास होती है उसको जो हम पौधों के तौलिए में बिछा देते हैं, या फिर फसलों के जो सब्जियां हैं सब्जियों के नीचे जो है पौधों में लगा देते हैं, ताकि जो है इसमें डायरेक्ट धूप हमारी ना जाए। तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक्चुअली जैसे हमारे केंचुए हैं, देसी केंचुए होते हैं, तो ये छाया में जो है रहना पसंद करते हैं, सूरज की रोशनी से ये दूर भागते हैं। जब हमारे पास अच्छा आच्छादन होता है तो इससे जो है हमारे पौधों की नमी बनी रहती है, ज़मीन की नमी बनी रहती है, साथ में जो केंचुओं के लिए जो है बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो इसमें जो केंचुए हैं हमारे बहुत अच्छा रोल करते हैं। ये जो केंचुए होते हैं ज़मीन में नीचे 10-15 मीटर तक जो है ऊपर नीचे चलते रहते हैं, एक टनल बनाते हैं एक प्राकृतिक, जिससे क्या है कि हमारी हवा और जो पानी का जो मिश्रण जो है वो प्रॉपर बनता है, जो पौधों को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। इसके बाद जो है दूसरा जो हमारा घटक है वो है वापसा। वापसा एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे हम इंसान है, इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी हमारे सांस लेते हैं, तो जो वापसा जो है एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें नमी और हवा का जो है एक बहुत अच्छा मिश्रण बनता है, जिसमें हमें हम बोलते हैं कि 50-50% में हमें जो है अच्छी ग्रोथ के लिए पौधों के लिए नमी भी चाहिए और इसमें जो है आपका हवा का संचार भी होना चाहिए। तो इससे जो है जो वापसा है हम इस तरह का वहाँ कंडीशन तैयार करते हैं कि जो है उसमें आपकी अच्छी एरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा पौधों की जो है या फसल की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ में जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि हम इसमें उर्वरक प्रबंधन के लिए जो है हम इसमें मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, मतलब बहुत सारी फसलें, बहु फसलें हम इसमें लगाते हैं। और साथ में जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग फसलें होती हैं, जैसे दलहनी फसलें हैं या लेगुमिनस क्रॉप जिनको हम बोलते हैं, मटर है हमारा और ये बीन्स है, राजमाश है या माश है या उड़द है, मूंग है, तो ये जो फसलें होती हैं ये हमारे जो वातावरण से जो हमारी नाइट्रोजन होती है इसको इकट्ठा करके पौधों की जड़ों में जो है फिक्स कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो इनकी जड़ों में नेडुल के तौर पे जो है ये जमा हो जाती है। तो इस कारण जो है ये जो है दूसरे पौधों को जो है मिल जाती हैं। कुछ तो हमारी आच्छादन से आपकी नाइट्रोजन मिल जाएगी और दूसरी जो है कुछ है ये बैक्टीरिया कर देते हैं, कुछ फंगस या जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और तीसरा जो है हमारा जो हम ऊपर से ये घनजीवामृत या जीवामृत डालते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नेचुरल फार्मिंग जो है उर्वरक का बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाता है, इससे हमारी फसलों की बहुत बढ़वार होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: हाँ जी हाँ, देखिए जैसे आप जानते हैं कि रसायनों के जो है बहुत सारे दुष्प्रभाव है, इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है, हमारा वातावरण एक खराब हो रहा है, खास करके बच्चों वगैरह के लिए हम देखें या कोई भी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड डालता है तो उसके दुष्प्रभाव जो है हमें दिन प्रतिदिन देखने को आ रहे हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश में देखा गया है कि हम जो हमारी देश की जो औसत है अभी तक 2.2% जो है हम हिमाचल में करते हैं, जबकि देश में जो है 6% जो है कैंसर की अभी तक जो संभावना है। तो हिमाचल में हम जो है बहुत ज़्यादा इसमें पेस्टिसाइड होने की वजह से कैंसर के लिए भी ज़्यादा जो हमें चांसेस ज्यादा है, तो इस करके हमें जो है ये कम करना है। दूसरा से कि आप जानते हैं कि सेबों में जो है साइंटिफिकली ही कम से कम 8-10 हम स्प्रे जो है रिकमेंड करते हैं। अब डे बाय डे जो है हमारे जो पेस्टिसाइड का कंज्यूमशन है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि 1965-66 से जो जब हरित क्रांति हुई थी देश में, तो उस टाइम जो है खाद का काफी इस्तेमाल हुआ था, तो उस टाइम जो औसत थी वो 23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि अब जो है बढ़ करके 54 kg हो गई है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। तो इस वजह से हमारी जो भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है वो बढ़ने के बजाय

जो है घटती जा रही है, उसकी जो हमारी गुण है मिट्टी के वो भी खराब हो रहे हैं, मतलब उस मिट्टी बहुत सख्त हो जा रही है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस करके जो है हमें जो है इसकी ओर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम लंबे समय के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कर सकें, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हम जो है अपना जो खर्चा भी कम कर सकें। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो है हमें इसकी ओर जाना बहुत ज़रूरी है। जो प्राकृतिक खेती के थ्रू जो हमारा उत्पाद तैयार होता है उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होती है, जो काफ़ी 10-15-20 दिन तक जो है इवन ख़राब नहीं होता, और तीसरा है कि लोग जो है इसको, खास करके जो मंडी में अगर हम बात करें, तो आढ़ती भी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि

0: की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। जो प्राकृतिक खेती के थ्रू जो हमारा उत्पाद तैयार होता है उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होती है, जो काफ़ी 10-15-20 दिन तक जो है इवन ख़राब नहीं होता, और तीसरा है कि लोग जो है इसको खास करके जो मंडी में अगर हम बात करें तो आढ़ती भी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी जैसे शेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से जो है ये इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उचित ज़्यादा रेट देते हैं, बल्कि 100-200 रुपया जो है पर क्विंटल।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और बागवान भाइयों से साझा की। इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी से जानकारी हासिल कर रहे थे राजेंद्र।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक और लोकगीत का, तो आइए कृष्णलाल सहगल की आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कृष्ण लाल सहगल की आवाज में यह लोकगीत। तो हेमराज जी, अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों की भी। किसान भाइयों, कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा जहर मुक्त खेती। साथ ही मनोरंजन करेंगे प्यासे लोकगीतों के साथ, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती।
1: बिल्कुल। तो हरी जी, देखिए अब तो घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति का। तो सभी किसान और बागवान भाई बहनों से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: कृषि जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 होने वाले हैं। आप कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTS सेवा और मोबाइल ऐप

0: न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को घटाकर 1% करने का लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम, कांग्रेस के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए लागू। और सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को देश भर में मिला प्रथम स्थान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आज लोकभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश की प्रेरणादायक उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल हाई फ्लायर के लोकार्पण अवसर पर ये बात कही। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाने की इस पहल की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पुस्तक में शामिल कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। कविंद्र गुप्ता ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा आज समाज में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है और युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन गया है। राज्यपाल ने नशे की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी बल दिया। राज्य के विभिन्न जलाशयों में मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े मछुआरों की आय को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को 7.5% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस निर्णय से गोविंद सागर, पौंग बांध, चमेरा, रणजीत सागर और कोल बांध जलाशय पर आजीविका के लिए निर्भर करीब 6,500 मछुआरा परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन पहलों के माध्यम से मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने डीके शिवकुमार को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा

0: है कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा व दशा स्पष्ट कर दी है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश देकर ये संकेत दे दिया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का समय निकट है। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये केवल चुनावी जीत नहीं है बल्कि जनता द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सुनाया गया अविश्वास प्रस्ताव है।
1: इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना। मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक उनके जानते थे कि जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमने पहले भी कहा था वो इसीलिए चुनाव को लटका रहे हैं। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यासित किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत जो है वो दिलवाई। जनता ने प्रदेश से इस सरकार को हटाने का उखाड़ने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया।
0: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के तीन जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों के लिए 10,021 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल संकल्प को नई गति प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, वंचित व आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और हिमाचल को भी इस योजना का निरंतर लाभ मिल रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्नातक डिग्री पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप समाहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगी। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। लाहौल स्पीति जिला की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। शांशा पंचायत को प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंचायत प्रधान प्रशांत को प्रदान किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। इस उपलब्धि से पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूर्व जिला परिषद सदस्य कुंगाबोध ने पंचायत के सभी लोगों, कर्मचारियों और जिला प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सम्मान सामूहिक प्रयासों, मेहनत और समर्पण का परिणाम है। शांशा पंचायत की इस उपलब्धि ने लाहौल स्पीति और पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इस बीच मंडी जिला के बलह विकास खंड की लोहारड़ी ग्राम पंचायत ने क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा सोलन में 111 घंटों की हैकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के प्रभारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि इस हैकथॉन में पुराने समय में किस तरह से जीव जंतुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जाता था

0: पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भविष्य में नवीनतम व पौराणिक तरीके से जीव जंतुओं का संरक्षण करना है।
1: हैकाथॉन का मतलब भी ये है कि एक लॉन्ग डिस्कशन लीडिंग टू सम कंक्लूजन। सो हम साइंटिफिक डिस्कशंस करते हैं, लंबी डिस्कशन, जैसे पूरी ZSI मिलकर 111 घंटे का ये डिस्कशन। इस साल का जो थीम है वो हमारा है ट्रेडिशनल नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचाएं ट्रेडिशनल नॉलेज के तहत। मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि भाई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पुराने आज विलुप्त हो रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि जो पुराने जो नॉलेज था हमारा, जो बुजुर्गों का नॉलेज था, वो खत्म हो रहा है। इससे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो फिर उसी ट्रेडिशनल नॉलेज को सामने ला रहे हैं।
0: नाहन शहर में लंबे समय से पानी का बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जलशक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता रोशन शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 120 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बार बार नोटिस के बावजूद अपने बिलों की अदायगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता एक सप्ताह के भीतर अपने पानी के बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो बिना नोटिस उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
2: जो बिलिंग में है हमने कम से कम उनको लोक अदालत से भी ये तीन तीन बार नोटिस भी चले गए, खुद मेरे द्वारा भी उनको नोटिस चले गए। विद इन 7 डेज में अगर वो नहीं देते तो उनके कनेक्शन काट दिया जाएगा, ना उनको कोई नोटिस मिलेगा। हम उनको बार बार फोन भी कर रहे हैं, कम से कम 120% ऐसे जो टाइम से अपना भुगतान नहीं कर रहे हैं, अमाउंट 10,000 से भी ज़्यादा, तो अब उनको ना कोई दी जाएगी, सिर्फ कनेक्शन कटेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, समाज को शिक्षित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य आखेट पर लगने वाली रॉयल्टी को घटाकर 1% करने का लिया निर्णय। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए लागू और सामाजिक न्याय व सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को देश भर में मिला प्रथम स्थान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर पुलिस

0: निदेशक हिमाचल प्रदेश श्री अशोक तिवारी से भेंटवार्ता, भेंटकर्ता सपना ठाकुर। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी की हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। युवा अगर उड़ान भरें तो मंजिलों की कमी नहीं है, परंतु यदि कदम नशे की ओर बढ़ने लगे तो अपने भविष्य के साथ साथ परिवार, समाज और देश का भविष्य भी संकट में पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण की। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अशोक तिवारी जी। आप हैं पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग। अशोक तिवारी जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: तिवारी जी। सबसे पहले हम इसी बात पर आते हैं कि वर्तमान समय में चिट्टा समाज के सामने एक चुनौती बनकर उभरा है, प्रदेश में नशे की स्थिति क्या है?
2: देखिए, हिमाचल प्रदेश हम सभी को पता है एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है, बट पिछले कई सालों से एक नशे की समस्या बढ़ रही थी और पिछले 3-4 सालों में उस नशे में भी, लेकिन नशा कई तरह का हो सकता है, सिगरेट से शुरू करें, शराब से शुरू करें, चरस, भांग, गांजा, लेकिन जो चिट्टे की समस्या है, हीरोइन जिसको कहते हैं, ये पिछले 3-4 साल में काफ़ी तेज़ी से उभरी है। स्पेशली जो हमारा यूथ है प्रदेश का, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये काफ़ी वल्नरेबल है। ये जो शिकायतें या इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं कि चिट्टा और ऊपर से पड़ोसी राज्यों से इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ, तो इजी अवेलेबिलिटी, यूथ का वल्नरेबल होना, तो इस कारण से समस्या बढ़ती जा रही है। पुलिस जो है अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो भी हमारे पास लीगल पावर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए इस समस्या को जड़ से ख़त्म करें।
1: तिवारी जी, जैसे आपने बात की कि नशे की सप्लाई चेन, तो नशे की सप्लाई चेन में इंटर स्टेट नेटवर्क और युवाओं की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह से चुनौती जो है आपके समक्ष है?
2: जैसे आपको पता है कि पड़ोसी राज्यों से ही सप्लाई आती है, यहाँ तो चिट्टा या हीरोइन बनने की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। यूथ इसमें इन्वॉल्व सप्लाई में उतना ज़्यादा नहीं है जितना वो वल्नरेबल है टारगेट ग्रुप है। जहाँ तक सप्लाई चेन की बात है तो उसमें आपको पता ही है कि इजी मनी या और भी कई वजहों से जो भी प्रदेश के और प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के जो लोग हैं वो इस धंधे में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सरकारी एम्प्लाई भी, जिसमें पुलिस वाले भी कुछ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, और ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। तो पीछे हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक सख्त कदम लेते हुए जो हमारे साथी किसी भी कारणवश, दुर्भाग्यवश इन सब चीज़ों में सम्मिलित या संलिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से 21 लोगों को डिसमिस कर दिया है। और आगे भी एक स्पष्ट संदेश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी विभागों के लिए, विशेषकर पुलिस में, क्योंकि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समस्या को जूझना, इस समस्या को ख़त्म करना, कि कोई भी हिमाचल प्रदेश पुलिस का कर्मचारी किसी भी रंग का, अगर वो चिट्टे या इसकी स्मगलिंग से संबंधित किसी चीज़ में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इंक्लूडिंग डिसमिसल, केस रजिस्टर हो गई।
1: और तिवारी जी, क्या इनकी जो संपत्ति है वो भी जब्त होती है?
2: बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा इस प्रश्न का जवाब मैं थोड़ा विस्तार से दूंगा। मैंने बताया पिछले कुछ सालों से ये चिट्टे की समस्या बढ़ती आ रही है, तो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये अगर हम केवल हिमाचल पुलिस के ऊपर छोड़ देंगे कि चिट्टे की समस्या को ख़त्म करना या चिट्टे को पूरी तरह से प्रदेश को ख़त्म करने केवल पुलिस की जिम्मेदारी, जो एक परसेप्शन था, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत सोचा था या गलत कहा था, फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। उन्होंने कहा कि एक मैं जन आंदोलन चलाऊंगा जिसमें पूरे प्रदेश का स्त्री पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, चंबा से लेकर सिरमौर तक और ऊना से लेकर लाहौल स्पीति तक सभी लोग इसमें शामिल होंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एंटी चिट्टा जन आंदोलन में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले साल 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ शिमला के रिज मैदान से इस एंटी चिट्टा जन आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद 4 अवेयरनेस वॉकाथन हुई, शिमला में हुई, फिर उसके बाद धर्मशाला में हुई, फिर हमीरपुर में और फिर बिलासपुर में। तो इससे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये कहना है कि जो चिट्टे के खिलाफ लड़ाई है, जो चिट्टे के खिलाफ उनका जन आंदोलन है, इसमें युवाओं को आगे आना होगा, एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो ये जो 4 एंटी चिट्टा अवेयरनेस वाकाथन हुई, इसमें विशेषकर यूथ ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, चाहे 11th-12th के स्टूडेंट थे, या इवन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के, या शिमला में IGMC के डॉक्टर्स ने बड़ी संख्या में, और धर्मशाला में और हमीरपुर में टांडा मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी बड़ी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में आकर उसमें एंटी चिट्टा अवेयरनेस वाकाथन में भाग लिया। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि पूरे प्रदेश को इस लड़ाई को लड़ना होगा, विशेषकर युवा वर्ग को, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ कोई परिवर्तन आया बड़ा, तो उसमें युवा वर्ग का बड़ा सक्रिय योगदान रहा। तो यहाँ भी उन्होंने इस बात को समझ

0: देखते हुए कहा है कि युवाओं को उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय भूमिका इस लड़ाई में निभा रहा है। पुलिस के कंटेक्स्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमको भी युवाओं से पूरा सहयोग मिल रहा है। इन एंटी किट अवेयरनेस वाकाथन के अलावा भी हमारे पुलिस के साथी, चाहे पुलिस स्टेशन लेवल के हमारे SHO और उनके साथी हैं, या सब डिवीजन लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SP, यहाँ तक कि शिमला में पुलिस मुख्यालय में मैं और मेरे साथी, हम लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ लोगों को अवेयर करते हैं कि पहली बात चिट्ठे से कैसे दूर रहें, दूसरी बात लोगों को पड़ोस में
1: जोड़ा जा रहा है,
0: आम लोगों को पड़ोस में, परिवार में लोगों को, उनको भी कैसे अवेयर करें कि चिट्ठे से दूर रहना है। तो अगर ये युवा वर्ग जग जाएगा और पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।
1: चिट्टे के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें आप जीत हासिल कर रहे हैं। नशे के खिलाफ ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तिवारी जी, जैसे कि आपने कहा कि एक वाकाथॉन की भी आयोजना है, 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिज मैदान शिमला में एंटी चिट्टा और क्लीन एनवायरनमेंट अवेयरनेस मिनी मैराथन 2026 का आयोजन कर रहे हैं। इस पहल के जरिए आप प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस मिनी मैराथन में किस तरह के आयोजन और क्या कार्यक्रम शामिल रहेंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे?
0: देखिए, हम सभी को पता है कि जो जून 5 तिथि है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम पे मनाया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, उनके सेक्रेटरी और हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हर साल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं बट पीटर हॉफ में करते हैं। तो इस बार उन्होंने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिल के इसको करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, इसको बड़े स्तर पर एक आप आयोजित कीजिए। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम 5 जून को एक एंटी चिट्टा अवेयरनेस और ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल प्रदेश, इसकी अवेयरनेस के लिए ये एक हम मैराथन या मिनी मैराथन आप कह लीजिए, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर। इसमें एक 10 किलोमीटर की रेस होगी जिसको आप मैराथन या मिनी मैराथन कह सकते हैं, और दूसरी ड्रीम रन है वो 3 किलोमीटर की है। तो जो विजेता होंगे मेल और फीमेल कैटेगरी में, तो 10 किलोमीटर वाले में उनको 51,000, 31,000 और 21,000 रुपये का इनाम मिलेगा दोनों कैटेगरी में, मेल और फीमेल अलग। और जो 3 किलोमीटर की ड्रीम रन होगी उसमें जो विजेता होंगे उनको 21,000, 11,000 और 5,000 का इनाम मिलेगा। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमने बुलाया है, करीब 50 से 100 के बीच में उनकी संख्या है, वो लोग आएंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी हम एक रिवॉर्ड टाइप का देंगे जो भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा जो भी इस मैराथन को, चाहे वो ड्रीम रन है चाहे 10 किलोमीटर वाली मैराथन है, जो भी उसको फिनिश कर लेगा सक्सेसफुली तो उसको हम एक मेडल भी देंगे जैसा नॉर्मली मैराथन में दिया जाता है। सुबह गवर्नर महोदय आएंगे महामहिम, वो इसको फ्लैग ऑफ करेंगे 7 बजे, और जब ये इवेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो 9 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, और एक ये जो क्लोजिंग फंक्शन होगा जिसमें ना केवल इन मैराथन के विजेताओं को बल्कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जो रिकॉग्नाइज किया कि जिन लोगों ने पूरे प्रदेश में, बच्चों ने, बड़ों ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने, जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन के अगेंस्ट काफ़ी काम किया है, तो उनको भी माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। ये मोटा मोटा लेआउट है इस प्रोग्राम का।
1: यानी कि युवाओं की भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा रहेगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए दौड़ने सुबह जब आएंगे 7 बजे, जब माननीय राज्यपाल महोदय फ्लैग ऑफ करेंगे तो युवा ही ज्यादा आएंगे, बुजुर्ग तो कम ही होंगे। अभी तक की मैं आपको फिगर बताऊं, कल शाम की जो थी तो हमारे पास करीब 2,500 रजिस्ट्रेशन होंगे, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। बट मैं साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि जो हमारे साथी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते या करा पाए किसी भी वजह से, अगर वो 5 तारीख को सीधे वहां पे प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने इसलिए रखा है कि हमको एक तो आइडिया हो जाए कि लगभग कितने लोग आने वाले हैं, दूसरा इसमें हम लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद एक टी शर्ट दे रहे हैं, उसमें लोगो लगा होगा पॉल्यूशन के अगेंस्ट और एंटी चिट्टा हिमाचल पुलिस के लोगों के साथ, तो वो उनको हम दे सकते, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का रखा है। तो कल शाम तक की फिगर ये थी कि लगभग 2,500 मेल एंड फीमेल उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक या 5 तारीख की सुबह तक ये संख्या करीब 3,000 से 3,500 के बीच होनी चाहिए।
1: अशोक तिवारी जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नशा मुक्त हिमाचल की, तो जो नशे की चपेट में युवा आ चुके हैं उनके इलाज के लिए और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार की क्या दीर्घकालिक योजना है, क्या कर रही है सरकार?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा,
1: पुनर्वास के लिए उनके।
0: मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एंटी चिट्टा जन आंदोलन प्रदेश में लॉन्च किया है। देखिए, इस जन आंदोलन जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद कर रहे हैं, इसके 3 कंपोनेंट हैं इम्पोर्टेंट। पहला है कि डिमांड जो है वो कट करे,

0: तो उसमें जो हमारे पुलिस के एक्शन हो रहे हैं कि सप्लाई चेन जो आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसको हम रोकें, तो जो भी इस तरह की तस्करी में इन्वॉल्व है उनको हम पकड़े, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ है जो आपने भी बोला कि डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कहा है कि चिट्टे के नशे के तस्करों के साथ तो कोई रहम नहीं होगी, उनके खिलाफ सारी कानूनी कार्रवाई होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी नौकरी जाएगी, प्राइवेट पर्सन है अगर उन्होंने इसे इलीगल कार्रवाई से स्मगलिंग से कोई प्रॉपर्टी बना रखी है तो उसको डिमोलिश भी किया जाएगा कानूनी प्रक्रिया का पूरा सहारा लेकर। लेकिन साथ में जो हमारे साथी हैं जो पीयर प्रेशर में या किसी और वजह से इसके शिकार हो गए, उनको चिट्टे की या नशे की लत हो गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये कहना है कि इनको हम डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। तो जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है 112, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे देश में हम लोग इस वक्त प्रथम है, इस साल फरवरी से हम लोग पूरे देश में रिस्पॉन्स टाइम में नंबर 1 है। तो इस पे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 दिसंबर को धर्मशाला के एंटी चिट्टा अवेयरनेस वाकाथन में ये घोषणा की थी कि जो भी इस पे चिट्टे से संबंधित सूचना देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी अनाउंस किया है कि यदि किसी के घर में किसी के पड़ोस में कोई ऐसा चिट्टे नशे का लती है लड़का या लड़की, उसको अगर किसी तरह की कोई मदद चाहिए जैसे काउंसलिंग हो गई या डी एडिक्शन के लिए मेडिकल हेल्प कोई चाहिए, तो उसके लिए भी वो 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में उसमें सूचना दे सकते हैं और पुलिस जो है पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, उनको काउंसलर से भी कनेक्ट कराने की कोशिश करेगी, अगर उनको कहीं मेडिकल कॉलेज या किसी डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर दाखिला लेना है वहाँ कोई मदद चाहिए उसके लिए भी मदद करेंगे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मशोबरा में अभी 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए जो डी एडिक्शन से कम रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसकी इनॉग्रेशन करेंगे और वो हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है उसको चलाएगी
1: जी।
0: जो मेडिकल सपोर्ट है वो हमको IGMC से मिलेगा और जो मशोबरा की प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे मिलेगा, बट इसको रन जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी और ये पूरे प्रदेश का पहला ऐसा डी एडिक्शन सेंटर होगा जो केवल महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि चिट्टे के नशे की जो लत है वो लड़के लड़कियाँ दोनों में है। किसी भी परिवार में लड़कों को भेजने में या लड़कों के लिए ट्रीटमेंट के लिए लोगों को उतनी हिचक नहीं होती जितनी लड़कियों के लिए होती है, तो ये था कि पुलिस के अगर ट्यूटले जिसे कहिए या पुलिस के गार्जियनशिप में अगर इस तरह का कोई सेंटर बने तो शायद दुर्भाग्यवश जिन परिवारों में बच्चियां जो हैं लड़कियां वो इस नशे की शिकार हो चुकी हैं तो उनको झिझक नहीं रहेगी, उनको लगेगा कि हमारी लड़की अगर वहाँ पर एडमिट है या वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक सिक्योरिटी है। तो ये हो गया डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन की बात। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमने शुरू में बात की वो अवेयरनेस, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यही देखते हुए इसी बात को सोचते हुए कि पूरे प्रदेश में पहले एक अवेयरनेस तो जाए, अवेयरनेस किसकी, दो बात की, पहला चिट्टा है क्या, इसकी समस्या क्या है, लोग कैसे इसके शिकार है, और दूसरा ये अवेयरनेस कि भाई ये हर एक की लड़ाई, मतलब अगर चंबा के गाँव में कोई बुजुर्ग है वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता ये चिट्टे की समस्या है, ठीक है हिमाचल सरकार जाने या पुलिस विभाग जाने, तो ये दूसरी अवेयरनेस है कि भाई ये हम सबकी मिली जुली लड़ाई है, हम सबको मिल के एक साथ इस समस्या से लड़ना है। और जैसे मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये विजन है कि इसमें युवा सक्रिय भूमिका निभाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर साथ चले
1: और उनके विश्वास जीतने की सबसे बड़ी बात है, तभी जीत हासिल की जा सकती है। नशे की जागरूकता के लिए पुलिस को, छात्रों, युवाओं, शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों, सबको एक साथ लेकर चलना होगा क्योंकि समस्या तो परिवार, समाज और स्कूल से शुरू होती है, तो यदि युवाओं से बातचीत की जाएगी तो कहीं ना कहीं हल तो मिलेगा।
0: हम लोग युवाओं से पूरी बातचीत करना है, हमारा संवाद जो जैसे मैं बताया कि हमारे सभी साथी स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जब ये एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकाथन होती है 4 जो इसके एडिशन हो गए उसमें हम लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का युवाओं से सीधा संवाद होता है, तो मुझे लगता है कि जो एक इसका उद्देश्य था कि पूरे प्रदेश में एक अवेयरनेस आ जाए, चेतना आ जाए, तो पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूँ, शायद पिछले साल सितंबर तक ये हाल था कि लोग सोचते थे ठीक है ये एक नशे की समस्या है, क्राइम है ये, तो पुलिस को देखना चाहिए, पुलिस की समस्या है या पुलिस की जिम्मेदारी क्राइम से निपटना। अब हर एक को पता चल रहा है कि नहीं, ये हम सबकी मिली जुली समस्या है और हम सबको मिलकर लड़ना।
1: तिवारी जी, अहम सवाल ये आता है, हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए भविष्य में पुलिस की क्या कार्य योजना रहेगी?
0: देखिए, पुलिस की भूमिका या एक सक्रिय भूमिका केवल नशे या चिट्टे से लड़ाई में नहीं है, अगर हिमाचल प्रदेश को एक शांत प्रदेश बने रहना है, एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी स्टेट बने रहना है, जहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि पूरे देश से महिलाएं निडर होकर यहाँ आके घूम सके अकेले, परिवार के साथ नहीं, अकेले, सोलो फीमेल ट्रेवलर जिसको हम कहते हैं, तो इन सभी में हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका की जरूरत है। और मैं आपको, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को ये आश्वासन देना चाहूँगा

0: पूरी हिमाचल प्रदेश पुलिस, चाहे वो बाहर के टूरिस्ट हैं, चाहे प्रदेश के लोग हैं इधर उधर घूम रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई भी उनको मदद चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को, चाहे वो मैंने बताया 112 पे या हमारे थाने चौकी हैं उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने सभी साथियों को केवल एक स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि देखिए, जो भी हमारे पास आता है हमें उसके बाद पेशेंटली सुननी है, हमें उससे पूरी विनम्रता और शालीनता के साथ व्यवहार करना है। यदि सामने वाला या सामने वाली किसी कारणवश एजिटेटेड भी है और अगर वो अपना टेम्पर लूज कर लेता है या कर लेती है, फिर भी हमको अपनी शालीनता बनाए रखनी है, जो मदद कर सकते हैं वो करनी है। और यदि किसी ने कानूनन अपराध किया है या किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी है, लेकिन वही शालीनता मर्यादा बनाए रखेगा।
1: तिवारी जी, हमारे आंगन में फिर से चिड़िया गाए, पर्यावरण का शोर कम हो, पेड़ कम कटें, जब तक प्रकृति सुरक्षित है तब तक ही हमारा अस्तित्व है, स्वच्छ पर्यावरण को लेकर आज आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, हम सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बाकी देश के मुकाबले या बाकी विश्व के मुकाबले यहाँ काफ़ी अच्छा है। जो फॉरेस्ट कवर की हम बात करें या क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर है। अब सवाल ये है कि क्या ये हम अपनी अगली पीढ़ी को छोड़ के जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: अगर हम केवल ये सोचें कि नहीं अभी तो ठीक है और बस जो हम कर रहे हैं उल्टी सीधी हरकतें या ऐसा कुछ कर रहे हैं लोग कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे इन्वायरमेंट जो अफेक्ट हो रहा है एडवर्सली, तो वो हम फिर अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? तो अगर एक हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाए तो जो ये 5 जून की इवेंट है उसमें एक बड़ा पर्पज़ या जो एक मैसेज डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग के साथ मिलकर देना चाहता है वो ये कि जैसे छिट्टे की लड़ाई हम सबकी मिली जुली लड़ाई है, तो ऐसे हिमाचल प्रदेश के जो इन्वायरमेंट को, हिमाचल की क्लीनलीनेस या ग्रीननेस है, इसको बनाए रखना ये हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और मैं इन्वायरमेंट को डैमेज करता हूँ। तो ये एक मिली जुली जिम्मेदारी का एक मैसेज, और जैसा मैंने पहले बोला, अगर ये भी हम युवाओं के मन में डाल पाएँ और युवाओं को अवेयर कर पाएँ तो मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश का जो एक इन्वायरमेंट है क्लीन और ग्रीन, ये लंबे समय तक चलेगा और हम अपनी अगली पीढ़ी को भी गौरव से ये दे पाएंगे।
1: तिवारी जी, आकाशवाणी के माध्यम से नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मेरा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही ये संदेश है, वो ये कि चिट्टे पर प्रहार, हिमाचल है तैयार। तो हम सब मिलजुल कर अगर चिट्टे से लड़ाई करेंगे तो हम जरूर चिट्टे पर विजय पाएंगे।
1: अशोक तिवारी जी, आज हमने नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण पर आपसे बातचीत की। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश श्री अशोक तिवारी से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता सपना ठाकुर। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी एक बार फिर 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। लीजिए, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:20 होने वाले हैं और ये समय एक बार फिर से है आपको संगीतमय सफ़र पर ले जाने का। इस सफ़र में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र रीटा पामा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वायदा है हमारा आपसे कि हम आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो चलिए जी, हम फिल्म संगीत का आगाज़ करें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार

0: दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
3: तो जी, इस वक्त आप ट्यून इन है 103.7 MHz FM शिमला पर। लीजिए, 8:22 हो चुके हैं। एक बार फिर से छेड़ते हैं संगीत की धुनों का तराना। देखिए, जब संगीत की धुनें दिल की तारों के साथ साज को छेड़ देती हैं, तो वही दिल, वही जो गाने हैं, वही गीत दिल में बस जाते हैं। ऐसे ही कुछ खास तकबीर रोज़ाना FM शिमला पर हम सुनवाते हैं आपको। और अब बेसब्री से आपको इंतज़ार है फिल्म संगीत का, तो चलिए जी, आपकी बेसब्री को थोड़ा सा कम कर देते हैं और कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं।

ये मधुर आवाज़ है लता मंगेशकर की। इनका साथ दिया है इस गाने में मोहम्मद रफ़ी ने। हसीना मान जाएगी फिल्म से है ये गाना, और ये गाना शशि कपूर बबीता कपूर पर पिक्चराइज़।

0: तो जी, इस वक्त फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप FM शिमला पर। फिल्म संगीत जारी रहने वाला है इस संदेश के बाद।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर पिक्चराइज बेहद ही खूबसूरत गाना फिल्म दिल तेरा दीवाना से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: तो चलिए जी, इसी गीत के साथ अभी के लिए फिल्म संगीत को कुछ समय के लिए देते हैं यहीं पर विराम।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखे युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। लीजिए 8:34 हो चुके हैं और इस समय एक बार फिर फिल्म संगीत का है, तो चलिए फिल्म संगीत के कारवां को आगे की ओर ले चलते हैं और प्रोग्राम का ये नगमा एंजॉय करते हैं।

0: तो जी, इस वक्त आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं FM शिमला पर। हम ये आपका आनंद बरकरार रखेंगे पर इस संदेश के बाद।
1: मेरा नाम लेडी कांस्टेबल रमा है और मैं 2022 बैच की भर्ती हूँ। तब से मुझे 4 साल हो गए हैं पुलिस में काम करते करते। उससे पहले मैं यहीं पे HP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रही हूँ। मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी कैसे मतलब युवा नशे की ओर जाते हैं तो ये देखा है। अभी मैं पुलिस में 4 साल से काम कर रही हूँ और सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज और स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कि नशा क्या है, बच्चे कैसे इसमें फंसते हैं और उनको अवेयर करना कि नशा क्या होता है। उसी में हम अपनी ड्राइव चला रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो आज का हमारा युवा है वो पुलिस के साथ मिलकर काम करें, वो केवल क्वेश्चन ना उठाएं, वो भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस के साथ आके इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ अभी के लिए फिल्म संगीत को देने वाले हैं यहीं पर विराम, क्योंकि अब 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। हमारी आपसे मुलाकात होगी अब ठीक 9:15 पर। तब तक आप बने रहिए FM शिमला के साथ और सुनते रहिए हमारे साथ। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिक

0: की दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25

0: में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति

0: विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi.

तो जी, एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं हम 103.7 MHz FM शिमला पर। लीजिए, 9:15 हो चुके हैं। अपने वायदे के मुताबिक हाजिर हैं हम एक बार फिर से आपको संगीतमय

सफर पर ले जाने के लिए ये समय रहता है एक फिल्म से प्रोग्राम का। तो जो आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो फिल्म 2009 की सफल फिल्मों में से एक थी और ये फिल्म 2002 में बनी तमिल फिल्म पम्मल के संबनन की रीमेक फिल्म थी। तो चलिए, इतना हिंट हमने आपको दे दिया है, अब आप इंजॉय कीजिए प्रोग्राम का पहला नगमा और अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी है हमारी आज की फिल्म। और हम तो बात करेंगे ही आपके साथ इस फिल्म के बारे में, लेकिन इस गाने के बाद आपके पास भी है काम, आप भी अंदाज़ा लगाइए आज के फिल्म के बारे में।

तो चलिए जी, इस गाने से आपने पहचान ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कमबख्त इश्क की। और ये गाना पिक्चराइज हुआ बेबो यानी करीना कपूर पर, अलीशा चनाई की आवाज़ में ये गाना। तो जब हम बात कर रहे हैं कमबख्त इश्क फिल्म की, ये 2009 में बनी थी ये फिल्म और सफल फिल्मों में से एक थी। 2009 में जितनी भी फिल्में बनी उनमें एक सफल फिल्म कमबख्त इश्क भी थी। इसके गाने बेहद ही खूबसूरत थे, सुपरहिट थे और इन गानों का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा था। अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो सबीर खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे साजिद नडियाडवाला, स्क्रीन प्ले सबीर खान, इशिता मोहित्रा, किरण कोटरेल का था और डायलॉग्स थे अनविता दत्त गुप्तन के। संगीत की बात करें अगर हम तो अन्नू मलिक और सलीम सुल्तान

और आरडीबी ने इस फिल्म में संगीत दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अक्षय कुमार, करीना कपूर, आफताब शिवसदानी, अमृता अरोड़ा, जावेद जाफरी, किरण खैर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। और एक ख़ास बात भी थी इस फिल्म की कि हॉलीवुड एक्टर भी थे कुछ जिन्होंने इस फिल्म में अपना अभिनय किया, जिनके नाम इस तरह से हैं: एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन, डेनिस रिचर्ड और ब्रेडन ने भी इस फिल्म में अपना जो है योगदान दिया। तो चलिए, इतनी बातें हम इस फिल्म के बारे में कर चुके हैं, गाने भी इस फिल्म के बहुत ही चर्चा में रहे। तो चलिए इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं आरडीबी की आवाज़ में।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ आज के एक फिल्म से प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने, और इस समय रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आपके दिल की आवाज़ लेकर हाजिर होते हैं हम बस FM शिमला पर। आप बने रहिए हमारे साथ।

तो चलिए 9:30 एग्जैक्टली हो चुके हैं और ये समय है आपके संदेशों पर आधारित प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन का। आपके दिल की आवाज़ हम तक पहुंचेगी आपके संदेशों के जरिए। तो चलिए जल्दी से हमें ईमेल भेज दीजिए airfmshimla@music.mail

@gmail.com. जी हाँ, हम आपके मेल्स का कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि आपकी कुछ पहली ईमेल्स के गाने हम प्रोग्राम में करने वाले हैं शामिल. तो जल्दी से हमें मेल भेज दीजिए. और आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि एक ही मेल आप भेजें, ताकि जो हमारे नए लिसनर्स प्रोग्राम में जुड़ते हैं उन्हें भी प्रोग्राम में जुड़ने का और अपनी पसंद का गाना सुनने का मौका मिले. तो आप एक ही मेल भेजें, हम आपकी मेल ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपके कुछ पहली ईमेल्स को उठाएंगे और उनके गाने हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. तो चलिए, बहरहाल जब तक स्टूडियोज़ में बैठकर हम आपके संदेशों का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्जॉय करते हैं प्रोग्राम का पहला नगमा. और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से फिल्म का गाना है हमारे आज की प्रोग्राम की पहली पेशकश.

तो चलिए जी, जब तक हमने ये गाना इन्जॉय किया, हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुंच चुके हैं और आज सबसे पहले बाजी मारी है आशीषित तेराज ने। ये हमें रामनगर शिमला से अपनी ईमेल भेज रहे हैं। इनके साथ हैं राम और आशीष, ये भी हमें रामनगर शिमला से ही ईमेल भेज रहे हैं और हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता थे। इन्हीं के साथ हमें अगली ईमेल जो मिली है वो मिली है कुलशोभा कॉटेज सुनाम पंजाब से। मिस्टर विरोचन पुरी, मिसेस भारती पुरी, डॉक्टर के आर पुरी, मिसेस शोभा पुरी, डॉक्टर सौरभ, ज्योति इताश, पनिका रिधि पुरी और मास्टर विहीन पुरी। और ये लव एफएम शिमला बाय हाथ लिखकर भेज रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल आरजे लिखकर भेजा है इन्होंने और ये एक दूजे फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। इन्हीं के साथ है जी स्वीट स्वीट गुड इवनिंग जी लिखकर भेज रहे हैं अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, रीचा शर्मा, दर्पण शर्मा, लवदीप शर्मा, दिव्याना शर्मा सुनाम पंजाब से। और किसी भी सुंदर से गाने में हमारे नामों को शामिल कर लीजिए, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, आपके नाम हमने शामिल कर लिए हैं। और ये है जी, आपको प्रेम पूर्वक आदाब, दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम में हमारे नामों को शामिल कर लीजिए लिखकर भेज रहे हैं। सहारनपुर से गांव कुमार, हीरा से सैयद मंसूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और अगली ईमेल जो है ये है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सैन सुरेखा सैन का भी। और इनके बाद है अगली ईमेल नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह और मंगलाबेन शाह। चलिए, आपके नाम हमने प्रोग्राम में किए हैं शामिल और अगली ईमेल भी करते हैं जल्दी से शामिल। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पिलिस उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और ये है जी मध्य प्रदेश शिव मंदिर हकीकतपुरा से हैं ये मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्ण और पीहू सरकार। आपका धन्यवाद लिखकर भेजा है, हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं जी राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी। दोबारा इनकी ईमेल मिल चुकी है और चलिए अब आपकी ईमेल प्रोग्राम में हमने शामिल कर ली है। समय हो चला है हमारे श्रोता की पसंद का गाना चलाने का। एक दूसरे फिल्म से हमने ये गाना लिया है, तो चलिए इंजॉय करते हैं ये गाना।

0: तो जी इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं आपके संदेशों पर आधारित प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन। तो जल्दी से हमें आप और ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी हमने आपको बताई है airfmshimlamusicmail@gmail.com। आप जल्दी से हमें ईमेल कर दीजिए और अपनी पसंद का गाना सुनिए, अपने नाम भी सुनिए, अपने परिवार के जनों के नाम भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए जब तक हमने ये एक दूसरे फिल्म का गाना ये इंजॉय किया हमारे श्रोता की पसंद पर, अगली मेल्स भी हम शामिल करेंगे लेकिन इस संदेश के बाद।
1: मैं लेडी कांस्टेबल आनंदनी हिमाचल प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूं। इसी बीच हम बहुत से विद्यार्थियों, युवाओं और पेरेंट्स से मिलकर एंटी चिट्टा अवेयरनेस की बातें करते आ रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि जब तक किसी घर में किसी घर का बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है तब तक समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एंटी चिट्टा अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, यह एक जंग है ड्रग्स के खिलाफ। वो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 5 जून को रिज पर सुबह 6:30 बजे आके मिनी मैराथन में पार्टिसिपेट करे और इस अवेयरनेस को पूरे प्रदेश में फैलाए। जय हिंद, जय हिमाचल।
0: तो चलिए अपनी कुछ और ईमेल्स भी कार्यक्रम में करते हैं शामिल। और ये ईमेल हमें मिली है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर जौड़ा सिटी दीवाना, ये इन्होंने अपना नाम लिखा है और हमारी पसंद का गाना सुनने की ये फरमाइश करता है। इनके बाद अगली ईमेल जो हमें मिली है ये भेजने वाले हैं जी गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह रिक्की शेखावत। इनके बाद है जी अगली ईमेल जो भेजने वाले हैं जिला पटियाला पंजाब नाभा से सोमदत्त ज्योति रानी मुरत कौर मनु और इनके साथ है जी सोमदत्त इन्होंने अपना नाम लिखा है सोमदत्त कौर और चुपाड़ी रोडू शिमला हिमाचल प्रदेश से है जी तारा सिंह गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, जमीनता गुंजेटा, लोभाराम गुंजेटा, अनुज मुकुल गुंजेटा और समस्त गुंजेटा परिवार। और इन्होंने मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना सुनना चाहा है। इनकी फरमाइश आई है जी अभी पंजाब नाभा से। तो चलिए

हम अपने फरमाइशकर्ता की फरमाइश भी ज़रूर पूरी करेंगे। कुछ और ईमेल्स करते हैं प्रोग्राम में शामिल, और ये भेजने वाले हैं जी जगदीश चंद, जो हमें IGMC शिमला से हमें ईमेल कर रहे हैं। और अगली ईमेल है रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। आदरणीय मैडम जी नमस्कार, ये बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया लिखकर भेज रहे हैं। आपको भी पूरे FM परिवार की ओर से नमस्कार, बिल्कुल आपके नाम हो चुके हैं प्रोग्राम में शामिल। ये है जी SM जावेद शगुफ्ता अंजुम झारखंड से ये ईमेल कर रहे हैं और हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता है। और अगली ईमेल जो मिली है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू की, ये सब प्रेम नमस्कार लिखकर भेजा है। और कोई भी गीत अपनी पसंद का चला दीजिए, बिल्कुल हम अपनी और अपनी श्रोता की पसंद पर आपको मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना सुनवाने वाले हैं बहुत जल्द। इससे पहले कुछ और ईमेल्स भी करते हैं कार्यक्रम में शामिल। ये है जी गाँव व डाकघर निमानाबाद ज़िला जिंद हरियाणा पंजाब, माफ़ कीजिए जिंद जिला और हरियाणा से इन्होंने ईमेल भेजी है। जसपीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, कोई भी गीत सुनवा दीजिए हमें, ये लिखकर भेज रहे हैं। और एक बार फिर से चुपाड़ी रोड़ू शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं जी तारा सिंह गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, जमींदा गुंजेटा, लोभाराम, अनुज मुकुल गुंजेटा, सवस गुंजेटा परिवार। और इसके बाद है जी अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से हमें ईमेल कर रहे हैं। चलिए अब आपकी ईमेल्स तो प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है, अब हमारे श्रोता इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनकी पसंद का गाना भी चलाया जाए। तो चलिए एंजॉय करते हैं हमारी श्रोता की पसंद पर मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना।

और अभी अभी एक और ईमेल मिली है, चलिए कर लेते हैं क्योंकि इन्हें भी इंतज़ार है अपने नाम का शामिल इनकी ईमेल। ये है अस्तापुरा जिला महजब मजहर अली अंसारी रज़िया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर रिजवाना परवीन हमारी पसंद का गाना सुनने की फरमाइश करता।

तो चलिए जी, गाने के साथ साथ हमारे श्रोताओं को अपने नाम का भी इंतज़ार रहता है। और ये है जी बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपा ढिंगिया, ये दीवाना फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश करता है। और इनके साथ ही ये अगली जो ईमेल हमें मिली है ये है जी दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, राजस्थान से हमें ईमेल कर रहे हैं। और सहसपुरा लोहारा दनिया खुर्द ज़िला लिखा इन्होंने, और ये है जी गुनीराम राजपूत, संतोषी हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ये भी हमें अपनी जो है फरमाइश लिख कर भेज रहे हैं जी। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से हैं। और खुश रहो खुशियां बांटो, इनका लिख कर भेजा है इन्होंने। और इसके बाद जो अगली हमें मेल मिली है ये है जी जल्दी से करते हैं प्रोग्राम में शामिल क्योंकि समय हो चला है और आपकी ईमेल्स पढ़ना भी प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। यह है जी पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, कोई भी गाना अपनी पसंद का चला दीजिए। और ये है जी अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये टांडा से ईमेल कर रहे हैं। और अनिल दोबारा से इनकी ईमेल मिली है। और ये है जी शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और गांव डाकघर निमाना बांझिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर भी हमें ईमेल कर रहे हैं। चलिए जी, आपकी नाम तो हमने प्रोग्राम में कर लिए हैं शामिल, अब समय हो चला है हमारे फरमाइशकर्ता की फरमाइश को प्रोग्राम में शामिल करने का। और एक आधी ईमेल और पहुँच चुकी है, चलिए करते हैं जल्दी से शामिल। भोपालगढ़ राजस्थान से है जी धर्मेंद्र छिंपा, कंपेल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, और हमारे मैसेज को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, कर लिए हैं जी। और ये हैं मोहम्मद बबलू साहू, जामुन साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू, छत्तीसगढ़ से ईमेल कर रहे हैं। प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा मध्य उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिखा, मुना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और राज पैलेस भजन उत्तर प्रदेश से थे ये। और चलिए इनकी ईमेल्स हमने प्रोग्राम में शामिल कर ली है, समय है हमारे श्रोता की पसंद का गाना चलाने का। दीवाना फिल्म से है, आप इंजॉय कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।

तुझे दीवाना फिल्म का गाना एंजॉय किया आपने, और इसी गीत के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपने पसंद किया होगा, और कोशिश की हमने आपकी पसंद के गाने हम प्रोग्राम में शामिल करें और आपके नाम भी प्रोग्राम में शामिल करें। बहरहाल जिनके नाम आज प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं, आप कल भी हमें अपने नामों के साथ ही मेल कर सकते हैं और अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए इस कार्यक्रम को हम यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 10 बज चुके हैं। ये समय है गज़लों का।

तो चलिए जी, एग्जैक्टली 10 बज चुके हैं और ये समय रहता है गज़लों के कार्यक्रम का। तो हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको, बहुत ही खूबसूरत गज़लें आज की पेशकश है आप सभी के लिए। देखिए, दिल की आवाज़ दिल तक पहुँचे गज़लों के ज़रिए तो क्या बात है। FM शिमला पर हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन गज़लें हम रोज़ाना सुनवाएं आपको। तो चलिए आगाज़ करेंगे अनूप जलोटा की गाई इस गज़ल के साथ।

तुझे आप गज़लों का आनंद FM शिमला पर ले रहे हैं। देखिए, लबों पर मुस्कान, दिलों में अरमान लिए बैठे हैं आज हम गज़लों की इस हसीन शाम को लिए बैठे हैं। जब अल्फाज सुरों से मिलते हैं तो गज़ल बन जाती है, और जब गज़ल दिल को छू ले तो महफिल यादगार बन जाती है। चलिए एक बार फिर इस महफिल को हम यादगार बनाते हैं। मेहंदी हसन की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली गज़ल आपको सुनवाते हैं।

0: अगला और शेर है,
1: तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चरा,
0: तेरी हर चाप से यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया है, आठ आठ को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया, वो चराग हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग।

गज़लें आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। देखिए, गज़लें ऐसी हैं जिनमें सुर बसते हैं, जिनमें इमोशंस होते हैं, एहसास होता है। जब भी हम इन गज़लों को सुनते हैं तो हमें अपने ही पन का एहसास होता है। हमारा मूड कैसा भी हो, इन गज़लों को सुनकर हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो जी, हम इसी तरह की गज़लें रोज़ाना सुनवाते हैं आपको FM शिमला पर। लीजिए, जगजीत सिंह की आवाज़ में प्रोग्राम की अगली गज़ल एंजॉय कीजिए।

तो चलिए जी, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि गज़लों के कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली नज़्म भी आपको सुनवा दी जाए, चंदन दास की आवाज़ में कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: सुचि चंदन दास की गाई सी गजल के साथ गजलों के कार्यक्रम को अभी के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज लेडी कांस्टेबल निकिता एंड आई एम सर्विंग इन हिमाचल पुलिस सिंस 4 ईयर्स नाउ। सो टॉकिंग अबाउट द ड्रग अब्यूज इन हिमाचल प्रदेश, एज वी ऑल नो दैट हिमाचल पुलिस इज फाइटिंग स्ट्रांगली दिस मिनेक ऑफ ड्रग अब्यूज, बट वी आर नॉट द लोन वॉरियर्स, वी नीड द सपोर्ट ऑफ यूथ। I request each and every part of the society to please come forward and be our eyes and be our ears. On the occasion of World Environment Day, Himachal Pradesh Police, with collaboration in other departments, is conducting a mini marathon on Ridge at 6:30 a.m. Let our every step echo the commitment toward green Himachal and healthy and drug-free Himachal. Thank you.
2: Jai Hind, Jai Himachal.
0: तो सभी सुनने वालों का एक बार फिर स्वागत। लीजिए 10:30 हो चुके हैं, संगीत के कारवां को एक बार फिर से आगे की ओर ले चलते हैं और ये समय रहता है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का। ऐसे नगमे जो रहते हैं हमेशा एवरग्रीन। आप कहीं भी रहिए, आप किसी भी मूड के हों, आपके मूड को हमेशा ये रिफ्रेश कर देते हैं। ऐसे ही ख़ास नगमे हमारी FM शिमला की है खास पेशकश। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे आपको और आगाज़ किशोर कुमार कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस नगमे के साथ करते हैं।

ऐसे नगमे जो रहते हैं हमेशा एवरग्रीन, ऐसे नगमे जो कभी पुराने नहीं होते, आपके दिलों की तार को छेड़ दें, आपके समय को खुशनुमा बना दें। जी हाँ, ख़ास नगमे जो आपका इंतज़ार करते हैं रोज़ाना एफएम शिमला पर। लीजिए अगला नगमा एंजॉय कीजिए कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: तो जी आप इसी तरह से सुनते रहिए सदाबहार नगमे एफएम शिमला पर, और ये कार्यक्रम इस संदेश के बाद जारी रहने वाला है।
1: नमस्कार, मैं नरवीर सिंह, एडिशनल एसपी हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा के खिलाफ जंग में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस अन्य विभागों के साथ 5 जून को रिज मैदान शिमला से मिनी मैराथन का आयोजन कर रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और आकर्षक इनाम 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेस में दौड़ में प्राप्त करें, और जन जागरण के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन दे करके एक संदेश दें, ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस

संगीत दिल को सुकून देता है। संगीत हमारे मूड को रिफ्रेश कर देता है। संगीत वो जो दिलों से दिल की तार को जोड़ दे। संगीत वो जो एक दूसरे को एक दूसरे से मिला दे। संगीत वो जो हमारी जज्बातों को अपने शब्दों में बयां कर दे। जी हाँ, संगीत वो जादू है जो किसी भी जादू से बढ़कर है। और FM शिमला पर तो रोज़ाना हम आपको ऐसे ही नगमे सुनवाते हैं जो आपको मदहोश कर देते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा अनुराधा पोटवाल, उदित नारायण की आवाज़ में एंजॉय करते हैं।

तो जी आप इस वक्त सदाबहार नगमे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब हम आपको आखिरी नगमा प्रोग्राम का सुनवाएं। तो चलिए सुखविंदर सिंह की आवाज़ में एंजॉय करते हैं प्रोग्राम का लास्ट नगमा।

तो जी उम्मीद करते हैं कि आज की सुरमई शाम का आपने आनंद लिया होगा। बहरहाल इसी नगमे के साथ आज की सुरमई शाम को देते हैं यहीं पर विराम। इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हिंदी और अंग्रेज़ी समाचारों के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। कीजिए बस आप कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक

0: कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।